0: भारत की अहान बा बेफ्टा अवार्ड्स फंगलेदुना मालेमदा मणिपुर की मिंगचेट पुरकपंगम खरवा फीचर फिल्म बूम एमएसएफडीएस की पैलेस ऑडिटोरियम दा सितंबर की तांग 13 नोमाइजिंग नुमित की नुंगथिलपुंग अहुम खाइ ताब मतमदा उच्चगदौरी लायंस क्लब ऑफ इम्फाल लेमरोल नशिनबा फंड रेजिंग इवेंट असिदा बूम फिल्म येंगबी हौरो डोनेशन कूपन सिंह एमएसएफडीएस की काउंटर दा फंगबिगनी फीचर फिल्म बूम
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजिगयु की पुंग 8 मखाइ तारे मणिपुरी द पाउ दबिरेशी
2: आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबुम वाशिंगटन पाउ पाजरी अहानबदा मरुइब पाउ राज्य की चीफ सेक्रेटरी राजीव सिंह ठाकुर नंगरांग चुरचानपुर जिला द पाइखलिबा चाखत थौरांगी थबक सिंगमदी रिलीफ कैंप सिंगे फिबम यंगसिन ख्रे न्यू दिल्ली द पांगथोकलिबा ब्रिक्स लाइबाक सिंगे अवांग बथाकी मिफमगी ngarang अहोबनुमिता न्यू दिल्ली वारेप मोट अमतोइनि यानाख्रे अमसुंग केंद्रगी हक्सेल मंत्री जेपी नदान हाइरी लाइबाक असिबु असोयांगाम याहोंदन थमनाबगी दमक मियामबु मसामाउ फनलैहनबा तंगाइ फदे राज्य की चीफ सेक्रेटरी राजीव सिंह ठाकुर नंगरांग चुरचानपुर जिला दा मिफम अमा पांगथोकतुना जिला अदुद पाइखलिबा चाखत थौरांगी थबक सिंह हन्ने यंगसिनख्रे अमसुंग रिलीफ कैंप सिंगे फिबमसु यंगसिनख्रे डिप्युटी कमिश्नर की ऑफिस दा पांगथोकिबा मिफम अदुदा जिला थाकी ऑफिसर खुदिमक शारुक याखी ऑफिसर सिंह अदुना हौजिक पाइखलिबा थबक थौरम सिंह कया यामना खुमांग चौसिलबा अमदी तोंगान तोंगानबा विभाग सिंह दा मायोकनारिबा खुदोंचा दबा कया की मतांग दा मंगोंद पाउदमखी

0: भारत की अहान बा बेफ्टा अवार्ड्स फंगलदुना मालेमदा मणिपुर की मिंगचेट पुरकपंगम खरवा फीचर फिल्म बूम MSFDS की पैलेस ऑडिटोरियम दा सितंबर की तंग तरह हम दोई नोमाइजिंग नुमित की नुंगथिलपुंग अहुम खाई ताब मतमदा उच्च गदौरी लायंस क्लब ऑफ इम्फाल लेमरोल नशिन बा फंड रेजिंग इवेंट असिदा बूम फिल्म येंग भी हौरो डोनेशन कूपन सिंह MSFDS की काउंटर दा फंग भी गनी फीचर फिल्म बूम
1: ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ 8798802 93 ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ

0: दीदी, नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: मखल मचल गी टोंगन टोंगन ब थौरम सिंह ताबिरी बसी आकाशवाणी फॉल गी FM संगाई चैनल नी हौजिक पुंखम सिद लांथुक शरी फिल्म अमगी इसई द अरोई बनते फिल्म गी इसई सिंह कुदोल गी आहन बद ताबिरसी कुंज बिहारी अमदी सुनीता नेप्रम अनि पुने सगमिन ब के सी रोबिन अमदी प्रेमिला अनि ने सैरेंग ब सगोल सेम तिजेंद्र ना सैरंग बिशई।

0: တန်ဇကိဝေစေစေကလွိနနာဖီလ်မမဂိစိဒအရွိဘနတေဖီလ်မဂိအစေစင်လန်ထုတ်ဆဘလွိဇရေအဒုံနတဗီရဘဆာခစ်ပနီအင်ဖလ်ဂိ FM စငိုင်ချန်နယ်နီဟောဇိကအယုကေပုန်တရာတာရေမနီပူရီဒမရွိဘပေါတဗီရရှိ
1: အာကစ်ဝနီအင်ဖလ်ဟောဇိဖောပဂိမရွိဘပေါဘရစ်လူချင်းဘစင်နလစ်စင်နီကွန်မငါဂေဂျမ္မူကစမီဂိပဲလ်ဂမ်ဒထိုကိဘတာရစ်အတက်အဒူဘူယနင်းတဘပုန်တိုခရေလူချင်းဘစင်နပုနထောပချေရလမဒဟိုင်တာရစ်ဇမ်ဟိုင်ဘစီဟိရမ်အမတဒငါပိပမ်ထောက်တဘထောအမနီngasi BRICS summit kini ni chanba amasung aroi ba numita BRICS members sing amasung ma pangle bak sing oi ba apon ba mefam ma pang tok tuna resilience innovation cooperative amasung sustainability da yumpham oi ba maling gi chakho tharangi matang da khanagani kendra gi hakchal mantri JP Nadan hairi leba shibu aswe angam yohandana thamna bu kitam miyam bu mashamu phana lehen ba haiba sim yam namak tangai phade mantri ni hai masi gi pandam da pradhan mantri Ayushman Bharat health infrastructure mission asi hodoki bani scheme masi ki makha da lebak sin batung bada critical care block chatru kutrama to linkat pagi ayaba pikre kendra gi lowi singu mantri Sivra Singh Chauhan angrang lebak sin batung bada leba lakpati didi sing self help group sing gi nupi sing amasung pradhan mantri awas yojana gramin gi beneficiary singa virtual oino wari sanekre sri chauhan hai nupi sing asina lakpati oiduna nupi de sakti pibe gi khudam amo oire makhoi bu korporati didi ohena ba sarkar no hona ba ya phona ki gani haine su mahana makha ta ki ईदान तोबदा हरियाणा ना थंगना थंगना ना चेही ओम लगले बासिगे अटे राइजर सिंगे मको ओरे लिसिंग नि कुन मंगा कुन तरुक ता राइजर अदुदा पुन ने ईदान तोबगी केम लिसिंग नि पा जामा मरफु मपन हंगदो तु ने ई यूनिट लाख मंगा लिसिंग होमबुद्रा मपन दान तोखी नेपाल गी इचिंग साउद सिकी बे मिगी मसिंग लिसिंग अमा चहु मरफु तरुक सुक्रे हौजु पावो दे मियो लिसिंग मंगा चामा कुन्ट्रा रोम थीबे खंगदे ने लेडी सिक्युरिटी फोर्स ने हौजु सु मी थीबे अमा सुंग कनबे गे थबक चथरी हौजु पावो दे मी लिसिंग तरा हम दे चार्टर कनबे गम ख्रे अमा सुंग फिलिपींस ता पेसेंज अ पुबा फेरी अमा मई चापा गे थौ डॉक्टर सिकी बे मिगी मसिंग हुबुद्रा तरुक सुक्रे हौके बे युमसे खसन मि ता थौके बे मई चापा गे थौ दो अदु दे मियो चामा कुन्ट्रा थै टोंग बे फेरी अदु दे गे मियो निफुम दे कनबे गम खी मियो तरा हम दे ने थीबे खंगदे ने लेडी
2: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए

0: अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: मखल मथिल की तोगन तोगन पर थोड़म सिंह डाबी निवासी आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल ने पुंपम सिंह दाऊजिक लांटोक शरी तोगन तोगन पर सहीसक पर सहीसक पी सिंह ने सक पर गीत मधम मधम होइना कुदल की आहन बदत ताबी रशी सुनिधि चौहान अमदी आतिफ आसलम अनिपुन्ना सकमिन बगीट

गीत की अरोब लोकसरी इसई सैसली कुनाल गंजवाला के अमरी शान दाविरशी।

0: ꯇꯥꯟꯖꯈꯤꯕ ꯒꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯒꯤꯠ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: मखल मथेल की तोंगान तोंगान ब थौरम सिंह ताबिरिबा से आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल ने हौजिक संगाई चैनल की मखाता ब थौरम सिंह लांथोक पिनब की दम एको ये अनाउंसर सेराम लक्ष्मी द खुशी नजरी
3: थागत चरी MM सनाई आई

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हेलो
1: गुड
0: लेडीज की
1: मॉर्निंग
0: थरमदा
1: मैडम।
0: हेलो लेडीज लेडीज की थरमदा तराम लोग चरी।
1: गुड मॉर्निंग
0: गुड मॉर्निंग कोल तो बिरे सिगी
1: मैडम।
0: मिले फमान
1: कौन कौन लोग जमे का देगी बिमसा थंग लोग जमे मैडम।
0: ओए तराम लोग चरी बिमसा करम बवा फम फंग दुख के दोनों
1: मैडम हो जी की मसा है ना बिमसा ने ना मयुम मामा पाना दीदी ना देगी ये के थोंग थोंग ना चाय लाई सुधा वंजल लगा लाई बजे द मोजा नुपी अम्मा वो बगी यम पाला गा दी नुपी की थोड़ा अंगे हम चावी चाय से थोंग का है तबा देगी पिसु पिसाम बा अरे कोली वाय हम नुपी की थोड़ा अंगे हम चाव बनी ना मफे दी माने में दी ना हाय लगा वो लेना खन बा अदु मुबन नुपी का मैं आमा थेंग ना थेंग ना जे हाजे बे मेदा होय
0: होय
1: अदो अखोय मामा वो बिजिंग जिना मसा जिंग जे सही सराम खाल के दगी दी मसा न साब को लिखेंगन बा किसी किताम खरे तो होन बा

0: हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग मैम.
0: गुड मॉर्निंग. हेलो लेडीज की थोड़ा अंदर तरामनुक चरी वाह
1: वांग लेता है देखिए नॉरम सुबदनी ने
0: होए तरामनुक चरी सुबदनी
1: फोन जे तो उधर बस कोई रह था अमान तू भारा मने ने फोन तोड़ दिया था नो मतलब तो तो गया ना खन बता दे इसे ही खली अपाम भी इसे हम तक खन भंग दे फोन भंग दे देना
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯕꯗꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ. ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ. ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ.
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯦꯝ, ꯊꯝꯖꯔꯦ.

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हेलो लेडीज की थरम दत्ता राम नोक चरी। हेलो
1: हेलो
0: ताबी रबरा
1: आज मेरा कोई
0: सोम गिमिंग ले फम तक पीरो
1: नहीं था मैं उपाय
0: मैं इफा दगी का नाव बीरा बनो
1: थोड़ा
0: थोए थोए से फोन तो बिरे से आम तन न तो बिरे पर माले वा गे से आम गांग दे करी वा फोन तो बिदो नो
1: ती ए दो कई ना हाई दे दो हाई की तने दो तो ओपन ने बको आ
0: होय
1: दो
0: होय
1: कई हाई दे नो ए दो हाई बम दो खंग रा बक
0: ngasi na han ba phang bu ebi doira
1: हाँ मैं पंगो उदय बा
0: होय आम नुंगाई से रे ngasi han ba marup se ngasai han ba da su ama phang ja khre ko asi ge anirak su bani
1: kai hai kai hai ni koi ki
0: ah
1: dog pogan ji na nu ai ja bai ta de
0: hoi
1: ta ba su wakan lo sin te ke ji sum ano
0: mhm
1: oi ja bai ta de
0: hoi

0: हेलो हेलो हेलो लेडीज की थोड़ा उम्दा तराम नोक चरी होए मिंग ले फम हाना तक पियो
1: यम हाँ वो मछली तो बाय मेरा वो कल कोनो की मामा ले कर देगी रूपबती
0: रूपबती करी मामा ले कर देगी हैप्पी बा
1: कंपन की मामा ले कर
0: कांगुसम रूपबती नसी से होए होए नसी से ना हाँ बा कोल फंग बोए बिरिरा
1: हाँ मैं बोलती ना के वो को आह

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज की तो रोम
1: हेलो
0: दत्ता राम नोक चरी
1: हेलो ताये
0: ताबी रबरा कॉल तो भी रही सी की मिले फम खंग सके
1: होय ऐसे जी ता ब फंग ने
0: होय कॉल तो भी रही सी की मिले फम खंग सके हेलो
1: हेलो
0: ए की कुंजल से मैं एक सिग्नल ताबी दबरा
1: ताये ताये
0: होय कॉल तो भी ऐसे गिमिंग लाइफ हम हाना कहीं जगे
1: जब तब न ताबा
0: ताबी दबरा हेलो
1: हेलो हेलो ताये
0: होय होय करी करम बबा फम फोंग टोक पिगे दोइनो अदुगा मिंगली फम दसु खंजगे
1: इसागे कोन जेन थे
0: होय
1: तागे न ngai ya ba yang tui ne
0: nu
1: me jam ma he le
0: होय वारो भी बढ़िया दे इमागी नाक दे रेडियो से ले बिरे कदी खस्तंग लाभ थोपियो
1: ओ
0: हाँ बी इमागी मिंग ले फम
1: लंबी छोरों ना कब अप्रे ताकि कोई नहीं ताकि ना नाइ बस तू ही रह बने
0: होय होय कॉल तो वीरी बाई मागी मिंग ले फम खंजे के
1: होय अ तो अई कई नो मार जा जा तो लग गाँव
0: होय
1: ताकि हम तो उन्हें जा जा ना खंज बा
0: टेलीफोन की लाइन से तक की बना मपुंग फाना वारी साब फंग जाओ ड्रेड उन्हें मथंगे कोलम मुंग आई मिले से हेलो
2: हेलो
0: हेलो लेडीज की थोड़ा मंदा तराम नोक चरी
2: गुलाकन गुड मॉर्निंग मैडम
0: गुड मॉर्निंग मिंग लाइफ हम तो हाँ ना खंग जगे
2: कुरकुन लगी जिसमें वह मने तो मेरे मैडम
0: होय मने तुम भी तराम नोक चरी करी करम बुआ फंग फंग तो पी दो इनो
2: मैडम वापन मंगतन मैडम वो जी जो कि मती मरोगा आइए के तब जगा
0: हाय बियो
2: वो जी हाँ ना दी वो जी संडों लोकों आज अमने जी मिला को असे इसी जी याम ना लाख सेरा मिल को
0: होय
2: अलग जी शेल्लो उसे खराम जो ओबे आ की जे अलग जी खरा ओर इसे नों कार अगर ना तेरे के तू उपाय लेती है बा अलग जी तीन लोकों जे खरा कोई मन बड़ी पनींद्रे मोना

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: तराम नोक चरी मिंग लिफम खंग सके।
1: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग, हेलो लेडीज की थोरम द तराम नोक चरी।
1: आई को ब्लाक फ्रॉम द गेन नंग नंग तुम भी सब मैडम।
0: होय तुम भी
1: मैडम आज से देखो नहीं ये आप नंग सी ना मैडम ने फोन तो जरा कर दे।
0: होय करी की पुनिंग से भी नो
1: लंग वन था रे और पर से तो इरा खंग दे।
0: होय
1: मा बाबा लगी द बदु मंग द उर मैडम। अदुगा So, mari mga taruk sore ningon ng bibara.
0: Hoy, adu bu ima kuy gi po ba di si batawan ni? Hay ba di nong manat raga nong madi? Kuy kudi magcat kiki dawri bangak tani adu bu kari gi swataro ni kari gi thamoy hanta gatoy no adu bu lag iba langban thasi da ima gi nungay tapado kok na ba ima babagi like draba layo ikraba ima babagi ching adagi hayra katpi duna. Laida katpiragadi thamui da nungai tabdo khara khatang di hanthagani na thamjage ima
1: awai yo na mai khanje ekdam thok gaya la
0: hoi chai sing di unabira bro ima hujik se chai sing di unabira do male kari mathel chabirage
1: singa se thauge ma thoma kang ho ong ho re
0: yam na chana ba mathel ne di isei ma ta tho ji ma mayam puna tamina ne ba
1: yam thaga chare me da
0: chari सखें भी इतने मा फिल्म दगी पुष्परानी की खोंजल दनी थोकचोम चंद्रन सेरेंग बा आर के जीते न सेरेंग भी सही सी मैं अपना कुतो तमजरी तमिन सी

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: लेडीज की थरोप दत राम नोक चरी
1: सर, तुम आफ्टरनून मैम।
0: गुड मॉर्निंग फोन तो भी इसी की मिले फम खंग जगे मोरंग थेम प्रेमी हैप्पी बको प्रेमी करी करम बाबा फम फोंग तुक पिगनी फोंग तुक पिरो
1: माइन तो बनी है अको ये स्कूल बताई दे की ले बस सिंह है
0: होय
1: पेशादी मंदिर में तो ये हो गया था अभी का माई ये इस पेशादी का हम लोग बस कुछ ना चाहे सिंह की पिछा बाल मूव देना नीचे मु कोलो तो लो नी अन्ना आयरनी अंगांग सिंह
0: प्रेमी ममांग हेलो लेडीज की थरम से फंबिखरबरो प्रेमी वफम पुखत्पिरक्पा मथंगी कॉल अम्मा मुंगाई मिनरसी अदुदी को कॉल तौबिरक्पा गी दमक्ता थागत्पा फोंग दुक्चरी

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो दाजा रेमिंग ने फॉर्म
1: मैडम
0: हाई बी
1: तभी हेलो
0: हेलो ताबी रे ब्रा
1: कांटे
0: हो रेमिंग ने फॉर्म दो हाना थम बी कांटो दगी चोंबी हाई बी ब्रा
1: कांटो दगी चोंबी
0: हो चोंबी करी वफम फोंग दुक पिगनी
1: मैडम हाउ इज की गाड़ी खुथौ जे ก็ก็ว่าอันนั้นเนี่ยก็จะขอสอบได้ก็ว่าโหยโหทอกี้ว่าอือฮึแล้วนี่ว่าน้ําอยู่มาได้ที่ตรงนี้มันจะมันปกนี้โหยอินทาจะได้ดังๆนะครับนี่ก็ได้ก็ได้ทําได้โหยโหยอันนี้มีอยู่อือฮึอันนี้อย่างนั้นว่าตั้งอย่างนั้นโหยโหยอันนั้นอินเนอร์เท่าก็อันนี้เสมาเนี่ยก็อืมเรียนตะก็อือฮึ
0: อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ Hoi jombi se hau jik se jokar subam da lady ro
1: jokar di hale e
0: o
1: at chu bari de pai
0: hoi
1: kon ta na top en hai
0: mhm
1: do chum me dang gi ten ve na da gi dai de ji da ubi su chum pang da ga
0: na si di phang bi re
1: na si ju pang
0: hoi du di jombi ise ima kudo tam ja age
1: hoi
0: wa phom su phong tok pi re mani na Raza film degini Sarita Gasmira madi Sadananda ani ge apun mokhonjel da homen di waine sering ba Suresh Goswami madi Surchandra ani na serang be seni sei sikudo tamjari du di taminarsi
1: ani
0: tagajari

0: 이름덤 이래 짜기니 칸나 나하 아한 카이드나 마담마담기 톡나럭바 미요이크야 나시 에코이나 팅네리
1: 마클 마클기 일렉션 락바다 아노바 아리바 캔디데이트싱 짱옌기다마 톨룩투나 레이박 셈바다 아초바 사룩 야나바 호나리
0: 미점 에코이 마얌나수 마코이부카나노 카리 타박 토크라바게 아두가 카리 카리 타우라카니 하이브시디 캉닝리
1: 라카두리 버마니푸르기 일렉션다 캔디데이트 오비닝리바 싱기 와칼론 퐁독차나바 아마디 Miam the Masak Takchanaba, Minit Ohum Dagi Manga Pogwa, Radio Gi Kutanga Sandoknaba, Matam Tamjari.
0: Sponsor Tauduna Sandok Chagadaba, Tauram Sigidamak, Akashwani Falki, Commercial Section Da Tanabiu.
2: Maraibak Maramdam Nungshi Dabamiyo Shing, Irei Leram Loi, Mikhal Matam Lakpada, Aina Fai. Aikhoi na heli ngangna saknaba launaba ngaktani
3: micham praja aikhoi mayam su leibak sem gadaba afaba thabak tawrak gadaba candidate pamnai phanglabra
2: micham praja agent sing amati candidate sing da base toba lila tara sandoknana bagi aiba sing dagi script kauchari
3: AIR code soktaba amadi anauba awonba purakpa yaba script sing scrutiny tawjaraga october lesingani kuntaruk tagi thangna thangnana Nongmaizing Taramakta Lila Singh Sandok Chagani
2: September Kuntra Pawada Pung Amasanagata by Script Singh Akasbani Imphalgi Drama Section Da Yohan Birhu
4: Makal Matilgi Tauram Gaya Lantukuna Tahanjari Basia Kashwani Imphalgi FM Sangai Channel Dagini Akashwani Imphal haujik numidung bapung tarani toi tare manipuri da pau tavirasi
5: Akashwani Imphal khetrimayum chitrabhanu na pau pazari ahan badamaru eba pau Pradhan Menteri Narendra Modi nahairi maling leba kaya ga varaka tingbang pinna badagi leba sida chaun on bapurak pangamle. BRICS luching basing na listing ani kun mga gi Jammu Kashmir gi pahelgam da tokiba terrorist attack adubu yaning da bapong dokre. Varaki oino weapon and missile testing range ama nungchu Bengal gi purba midina purdat ningkat lagani amasung. Nepal gi sing ichaw da sikiba migi masing lising ama chahum marfu taruk sukre miyo lishing mga cham kuntra rom da thiba khangdina leiri. Taranipan suba BRICS summit ki ngasi nini chanba amasung aroeba numita BRICS members sing amasung mapan lebak singi oeba apum da mipa mama pangtukle mipa maduda resilience innovation cooperative amasung sustainability da yumfam oeba malengi chakwa tarangi matang da khanari mipa maduda wangang bada Pradhan Mantri Narendra Modi na hai malengi leba kaya ga varaka tengpang pina badagi leba asida chaun oon bapurak pangamle Shri Modi na hai
6: In charo stambho par aage badhte huye BRICS ke madhyam se humne इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ावा देने का प्रयास किया है क्योंकि हमारा मानना है कि ब्रिक्स में विकसित सॉल्यूशंस का लाभ केवल ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए इन्हें ग्लोबल साउथ की आवश्यकताओं के अनुरूप एडेप्टेबल और एक्सेसिबल बनाना चाहिए साथियों मैं मेरे निजी अनुभव से कह सकता हूं कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है
5: BRICS ki mapang lebak tara adudi Belarus, Cuba, Thailand, Vietnam, Malaysia, Bolivia, Kazakhstan, Nigeria, Uganda, amasung Uzbekistani. Mepamasilwar betungda Pradhan Menteri Narendra Modi na Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa, amasung Burundi gi Rashtrapati singa mepampang tokani. Sri Modi na Nigeria amasung Uganda gi Uparashtrapati singa su unoduna warisanagani. Mepamasi varaki BRICS chairmanship ki makhada pangtokadabani. ब्रिक्स लुचिबसी लिंग अनी एप्रिल जम्मू कश्मीर की पहलगाम टेररीस अटेक यानी फोदे लुचिबसी पुनः थोप चेरोद टेररीजम से हिरम पीपम थोब थोनी ब्रिक्स मिफुम की ngarang ahoba nimita ama toina yanakeba new delhi declaration hai terrorism ge thong pumna ma criminally amasung masi yaba ngamloi declaration asina terrorism sing ngankhoi lana chato sin toba sel thada bai yauna terrorism ge thong sing thingna ba thabak pa khana ba yanaki nongchup asia la thole ba charang na ba asigi warashin purakna bi matang da su declaration asida palle national highway 37 imphal jiribam lambi da ngasigi oina imphal tamna gari amata चत्रे एकोगे जिरीबाम पाउमिना हाय जिरीबामदा हुजिकारी चामरी कुंतरे पंदुने लेरी मसिगे मनुंगदा एलपीजी पुबतरा थाउपुबत टेंकर चामसुमना मरी यावरी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विलेज कमिटी के मिखल पांगथोना बा मपुंगफाना सेम साबलोरे मिखल थासिगे कुनगनी पांडा पांगथोकनी ngaram मिरेप चेलोक थोपगे अरोयब निमित्त पुन्ना मिरेप लिसिंगमा चाटु निफुना लंबा याउदना काखरे मखोसिंग अदुगे मनुंगदा मिरेप लिसिंगमा चंगा यांखैतेरना त्रिपुरा मोठागिनी मरफुमा थोइना बीजेपी गिनी अमसुंग अमना सीपीआईएम गिनी त्रिपुरा के लघु सूंग मंत्री रतन लाल नाथ नहरी राज्य असि के लघु सूंग की लम थेनरीब खुदचादेनबीदमता थीजिन हमजब की थबक पैखकदबनी त्रिपुरा लेब कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लिंखट की बगी चही कुन सुरप अमदी ग्रेजुएशन डे के थरम वफम श्री श्री रतन लाल फोंदोखिबनी मांग नहाय लघु सूंग हैबसी इचम संब सेनपम नते मशीमी वेब की सबटिया की होरपमनी मसना तुंगी फूड सिक्योरिटी अमसुंग कुंगंगी सेल तुंगी फिवम पगनना बहनबद अचौब मचा अम ओइरी लौमी सिंग कैथल सिंग सामना मकोन पुथोलीब पोथों सिंग मालें की कैथल यहनगदबनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बी एस एफ की डिरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार मेघालय फ्रंटर चतना भारत बंगलादेश की गंखई परिंग चतरीब ऑपरेशन बॉर्डर डोमिनेशन अटे सेक्सल थरोंखरे की खोचप मनुद श्री प्रवीण कुमार सभापति कमांडर सिंह मिफम पांथी मिफम गंखई परिंग गाकसेंब यौन अटे अहम सेक्सल थरों लखनऊ खनखी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है अवं नोपोलम लेपा की अटे मफू क्या अकब नोचुगनी मध्य प्रदेश नोचू थ अंध्र प्रदेश सौराष्ट्र कुछ कनबदगीने याम कनब फाउ की चांगदा नोचुगनी गुजरात अकब नोचुगनी है रेड अलर्ट लौथोखरे ताबीरिब पाव से आकाशवाणी इम्फाल भारत की वेपन एंड मिसाइल टेस्टिंग रेंज नोंचु बंगाल की पूर्व मेदिनापुर लिंखलगनी नोंचु बंगाल वेपन एंड मिसाइल टेस्टिंग रेंज लिंखनब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने पुखलप प्रस्ताव अदु राज्य की मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अयाब पीखिबनी मांगने हाय राज्य असिना चखनब होनबद प्रोजेक्ट असिना चाउन मतें पांगलगनी जुनपुत लिंखकदरुब टेस्टिंग रेंज असिना डीआरडीओ की ओइन अहुमसुब मरुएब हब ओइरगनी अटे अनी ओडिशा के चांदीपुर की साइट अमसुंग आंध्र प्रदेश की टेस्टिंग सेंटर नि वारी की ओइन इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज हाइन खंगरिब मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी ओडिशा द लेरी मसिद लॉन्च कॉम्प्लेक्स अनी मथौ तौरी गृहमंत्री अमित शाह की निमित हमने के मुंबई खोचट गरादी हौरे की खोचप मनुद एसियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई चेकनी तरुसुब अखिल भारतीय राजवक्षा सम्मेलन सरुक यागनी एसियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई श्री अमित शाह ने श्री गणेश दन्यानर्टी है मिथोब मेनुस्क्रिप्ट एक्जीबिशन होदोकनी मांग सोसाइटी असि की लाइब्रेरी चतना सोसाइटी असिना मेनुस्क्रिप्ट युखना थम्लिब लाइब्रेरी चतना यंगनी सोसाइटी असिद पांथोकदब थोड़ा श्री शाह मियाद वागनी मांग भारत डायमंड ब्रॉक्स पांथोकदब जे जी ई सी की अवार्ड इंथोपी थोरम सरुक यागनी नमी हूं चटप ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कांग्रेस लिंग अनी कुंतर न्यू दिल्ली लुशिंगे मेफम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ने पीरप चैथेंद खी केंद्र की लघु सिंग मंत्रालय ने है मेफम दिल्ली डेकोरेशन ऑन ड्राईलैंड थ्री दी चननब अयाब पीखी मंत्रालय से मखाता है वैज्ञानिक वखलों सेथोकना हेन फब लघु पुथप चथब की तंगाई फद ई दान तौब हरियाणा थना थना चाह अहमलब अटे राज्य की मकोरे लिंग अनी कुन मंगा कुन तरह राज्य पुनः ई दान तौब की कैम लिंग निपान चाम मरफुमापन हादोना ई यूनिट लाख मंगा लिंग मरफुमापन दान तौखी राज्य की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुमित मिश्रा ने है मई लाख तरह की चांगद ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯇꯩ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯏ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯂꯦꯗꯤ ꯍꯥꯔꯗꯤꯡꯁ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯚꯦꯂꯦꯟꯇꯔꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 1,146 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯔꯤꯛꯁ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 174ꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯧꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5,530 ꯔꯣꯝ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯤ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,600 ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ 497 ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3,600 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁꯇ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯄꯨꯕ ꯐꯦꯔꯤ ꯑꯃ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 36 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯀꯦ ꯀꯦꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 192 ꯇꯣꯡꯕ ꯐꯦꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 90 ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯐꯦꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯥ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯄꯂꯋꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯀꯤ ꯃꯅꯤꯂꯥꯗꯒꯤꯅ ꯀꯣꯔꯀꯥꯟ ꯇꯝꯅ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ G20 ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯀꯞꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯔꯤꯂꯪꯀꯥꯒ ꯗꯨꯕꯥꯏꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯅꯤ ꯃꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ 8:00 ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯄꯨ ꯔꯟ 90 ꯊꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯦꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ 3 ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯂꯪꯀꯥꯕꯨ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯕꯨ ꯋꯤꯀꯦꯠ 4 ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ T20 ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯑꯔꯨꯟ ꯖꯦꯠꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ T20 ꯃꯦꯠꯁꯁꯤꯡꯗ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯃꯦꯠꯁ 9 ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯃꯅ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯒ ꯚꯥꯔꯠꯀ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯅꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ 2025ꯒꯤ ꯖꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯄꯦꯍꯜꯒꯥꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯦꯄꯟ ꯑꯦꯟ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯪꯒꯥꯜꯒꯤ ꯄꯨꯔꯕ ꯃꯦꯗꯤꯅꯥꯄꯨꯔꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 196 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5,590 ꯔꯣꯝꯗ ꯊꯤꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ

नमस्कार दोस्तों, 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी इम्फाल का समाचार चैनल और मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। कार्यक्रम

दोस्तों आज हम आपकी खातिर लेके आए कार्यक्रम संगीत धमाका। तो आइए सुना जाए कार्यक्रम का ये पहला गीत, शान बाउल सुप्रियो महालक्ष्मी अय्यर, फिल्म है नई पड़ोसन।

दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपके मनोरंजन के लिए हमारा अगला कार्यक्रम लेके आएंगी लिंथोई। तो अब अपने दोस्त विनोद शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।

गीत माला की थोरम ताबिरी अदुम थोरम ताबिरी बस आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल दिगी हजी फुंफम से दमुक ताबिरसी अरीब मतम से सिंह खुदोल ग्याहन बद ताबिरसी अरीबम तोम्बिश ना शर्मन सकपा बी जयंत कुमार शर्मन सेरिंग बा मतमी से

아두디 바샤쿤 비바 성공기 미타이니 따라 비바 야오리 아이기 미타이 짜르바디 아이 군 빵근 빵근이 아이기

बाबू नचा के करी ले दी रे। अरे नचा तो पिछबा

아시마가 레비고 숙나기 와샤군따니 나짜나 하라오바 영조 타와이 따나 노조

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले
1: ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Matamisegi marisub databisi yensembam kunjabihari gi meyekta malimngan de yumnam nasakpa matamiseni tabisi

0: madugi mahuta. Mapahapiyo hay doon na ngay tauki.
1: Ibe ma.
0: Ay namagi ni ngay tiyem na pagidama. Hayang naman naman sige malakta. May kong tungo ko rin labadi. Imanus ko ito na napapi gani. Natrabadi. Pero ay hay doon na wasakki.
1: Ibe ma.
0: Ano mo pa ba? Nga sidi. Ipapiyo hay na mamahay kung ang dakal na mahay rin.
1: Ibe ma.
0: Ay mo kari kumahay bagi papa.
1: Ipagi be ma. Nang kari kuari. Hausik ko adugi matam na tri be ma. Isu ki tunggi lambi siangi. Tangka kasini isu ki aroi banat tini be ma.
0: Papa.
1: Palai ribi sidi. Ipalai ribi sidi. Nang kari kuari. Kawalai ri. Nang kambit pagunuko.
2: Ibe mal. Papa.
1: Nunggu kalau saya,
2: papa.
1: Oh ini di isyal aja deh saya,
2: papa.
1: Macam macam ni, leisyal leisyal mama, ibu ngambi. Macam apa orang betak tak betulna, thawam macam apa ngalim ngambi. Macam apa kita bukan apa, kuba kuror hurabi, lahir bi mama macam apa leipam ni. Macam macam ni saya, macam orang ramai saya, lengbiro saya, lengbiro.
2: Ibu mungkin ngapiu papa, ibu mal. Ay, tasinan ang hinapang gaya malan ka eh. Ay, hinahasing asin ang namutangak piyo, Ibe Mal.
0: Matamado. Hiyan ka eh.
2: Ibe Mal.
0: Masidi. Nang ibuhupo ba? Tati wahi sing atutana na ba? Ay, ginakumpandre.
2: Ibe Mal.
0: Lengbikro. Lengbikro.
1: Ibe Ma. Ano taan at sa alam at usantana sa kuntalagi kong libo lagi? Isyabu sakuntala orang kamu tu ribro,
2: ah? Papa, nangga madi papa, amadi anga tu na, kanglam kita bawa awam aisyak singa tu, aipu na loi nak kaki, lekaya sih na nangga tu piram kita bawa ikai ba, pikli ba anga tu na panglam kita bawa ikai ba, aikan taru benda kita mau esipu bangamre, aiga sih di. Sari yana ikong na tono na koy mo lang bulag lebani. Law, ay ni mang tado na chalo ibe ma.
1: Ibe ma.
0: Nanggay koy ka karimari tong na duna. Ay koy mo lang bulag lebani.
2: Ibe ma.
0: Ay koy mo. Ahang mo lang hang to pubira ka. Hatong pigay biri bro.
2: Nanggay wakala do karino ibe ma.
1: Shae. Shoy na ayala ba ang ang sibo. Shae ka isya ane hai bada. Shae po lemza ka darin na shae.
2: Baba.
1: Shoy na ayala ba kibo. Mapalay ba rin na shae.
2: Baba.
1: Shae. Aiyi, suhala ko matam yau re. Ngasih isu ke nungai re benu milasi da. Isu nuwang kaya gan sintha ban milu ke pirang ato. Mampu aiyi yang mengamoi. Cahep ling biro cahep.
0: Papa.
2: Nacana wakal tien bo uru bodegi. Amadi arang arak pusing tebu pamlu bodegi. Aiyi. Mama masani ki mampam na yamalak re. Papa. Yamalak. Aiyi mau mukta nungsi biyo. Aiyi, langjak kebe ilal sih ngak pi bagaloi nana. Aiyi nungsir apa isagi nungsir apa masak adoh. Mapa aiyi micida muktanguhan biune papa abuktuhan.
0: Nanti, mata madu hengkar.
2: Ibe mal,
1: ipari ibe ma.
0: Papa, langda micida bu. Kibam saadra bayi kui gicana pamleri brane papa.
1: Ibe ma.
0: Lebak ia sobat Hawaii puri bermisak amala, jadi belisat aduh dah, ngasih pau pada ayah, masa pau dah bermain bermain ini nacak tu dah hinggli eh papa.
1: Ibe ma,
0: aduh kisah macam tak, leisah nama mama ming polkar bi, miam lewuk tu bini ayah napa utuk bini bi ayah na, matau keram leh matau nacak kita ke papa.
2: Ibe ma.
0: Aigamoy papa, aigamoy papa.
2: Ibe mal, mamang taktay na lang jero ba iral singa do na mayriwoy do na. Aigi haksahang ase utwa na sakte krebasu. Aigo na waro magkarisu lay na noy. Emo, gasidi ay nahaja ba si amok tayabiyo. Aigi mahang tado na chala sila o. Aigi lal si amok tangagbiyo.
1: Chahe! Isu halak pun matam mulai cahaya, ling biru ke tuh bukan cahaya, ling biru.
2: Paribeh mal, anggi wakal dunia ukur berde, ayu masih tak. तू चक्करगे नंगी ननाक ताई अमुक हन्ना लागले रोई अमुक हन्ना लागले रोई नंगी पुनसी दा ऐना ऐयर पा अमुक हन्ना पीर रोई अदुब नंग न मतमलाई बक्की बितने इंसिंग दा बदे नंग अमदे ऐगे नुंशीर बीचा आदुना करीगु मतम दा ऐबु नुंशी लतु ना ऐगे नाता लाप मतम दा न कोई अनी के दमक ऐगे युम्गी थोंग दो लाऊ ना हाँग दो ले है बसे मतमलाई बक्की बितने इंसिंग कोई बेमाल अरे नंगी पुनसी ने याय पबो ऐसे नो नशी की दे यहाँ चल लगे कोई बेमाल
0: अमुक तंग आई बिको
1: आई बेमा
2: करी अमुक वाली बेमाल
0: असुक कोई बेमत तमसे मापाया उधने इसा हब योग सर पर या वहाँ बखुदी माँ नशी दे नंगी को या की उपला से एक वक्त तक तुमक सर का
2: नती नती
0: हवा बपुना मक तंग ते से बहुत जाऊ रगे
1: नंग लांदब नंग सीधी नंग न माई पाए
0: बाबा
1: इच्छा इपा न चौथोक चाहिए पुकी थनी
3: होसी अगोय मे की थोगे बनु पादु करानो पपो
0: हाय
3: हाय इमा होसी अगोय मे की थोगे बनु पादु करानो इमा
1: कना छु थो
0: बाबा
3: पपो होसी आइ के थोगाल द थैने बनु पादु जिगु नु पादु करानो पपो
1: कना छु थोखि दे ने बङो
3: होसी की पपो
0: हाय
3: होसी की नु पादु ना आइ गोन दे या मुन ने यंग ल मे पपो
0: होइ थने
3: आइ ना ऐ नमा बुहे उब मतम दा ऐ ऐ की हक्षांग पुंब तू चुंग की नहीं मा
1: कहिए बे मा
3: उच्च किन्तु पादू करानो पुपु मा उच्च किन्तु पादू करानो इमा
1: हाय ऐ कोशिश तो दिया कना सुला आम देने ओ ओ हाय हाय
0: सुला
1: इलेक्ट्रिक बिन खोमर कहीं नो मौय मौय अहम मरी दिला आमी आ मौय औरंगनी मौय औरंगनी मौय औरंगनी
0: इलेक्ट्रिक बिल खोमर कना सुला दिया
1: पुपु की थनीन नंग कहीं दौड़े, हाँ, पुपु तो शेर ने खुमो, नंग कहीं दौड़े,
0: पुपु,
1: हाय हो,
0: कहीं दौड़े,
1: शेर ने खुमो,
3: आई कैसे दौड़ी पुपु,
0: कसाई करी वाले के, हाय हो, नंग इधर मक, नमः इशाओ साउने ले रिबस दी, हाय हो, कसाई करी वाले,
3: इमा, नशी दिन ऐसा, ट्वेल्थ की एग्जाम ना मयाम पुम्बे देगी खुआई देगी मकोक लागतु ना नशा ना फास पूरी से तारी मा अदु वही बा सोइना है ना माई ने ताई मंग पालस ने इंग्लू बगी करी बुका देगे देगे मा
0: मा की बुआ
3: आई ने ताई मंग पालस ने इंग्लू बगी करी बुका देगे देगे
1: पुपु की थाने
3: पुपु ये वो आई ये कहीं ना फास ताबगी दबा मयानु वोक पगी तोरम पाग तोलियो मैं अब से आई चल पर पाम दे पुपो
1: पुपो के थाने
3: आई एक ही पक्षे ने देता मिया मधु की मवाग दा आई वो पोप पाप अगर इवाग दा ये तो इले पी देता मिया मवाग तो इने से वो पगल ले बते नशा ने कहा दा राउंग जरम के दम तो इवा तो इवा मपा मसकक ने वही दे इंगले बोगी करी मुका दरी के माँ
0: लगी थानी
3: अये अये की पक्षण चल रहे थे पपो अये अये की पक्षण चल रहे थे पपो
1: पपो की थानी नंग युवा कन्नड़ तो यह बता रखा थी पपो पपो नंग इला पंडा नंग इला पागे न सकता आगे को
0: तेरे ते पापा तेरे ते
3: ไอ้บุพ่อไอ้บุพ่อไม่สักตาละแกบุพ่อบุพ่อกิทะเลไอ้บุพ่อนางนายเองมียามมาบังดานางนามากกทมกิปรายส์เราบุมาตําดาบุพ่อมียามคังนางนินาปายมาชักปุปูนาซอยนาตาคณีโกอาบาอาชีพบิรบุพ่อเชมเรปุปูนมียามมาบังดาปุปูนานางนินาปามิงซอยนาตาคณีบุพ่ออะตะดิบุพ่อไอ้เยเซ
1: ऐ
3: 아버지 무슨 긁는이고 이봐. 아이 좀 아이 좀 뭐야고 마드다. 아이 좀 바보래 아이도 매하고 막다 이제 정도 아이면 야는 이거 이봐.
0: 이봐 볼까리 아이 아이면 게리 이봐.
3: 이봐 아이 아이 여기 벅셨지. 소이들 석근이 이봐. 부부 아이 여기 벅셨 소이들 석근이 부부. 아이
1: 석근이. 절호 절호 절호. 행천 하나 볼까리 이까이 시합자 하나 보는 경신자로. 절호 절호.
3: 아이 이게 행지. 아이 이봐 부부 석근이 나와. 아이 아이기 뭐뭐 생각이 되고 이게
1: 잘하네 잘하네
3: 잘하네 아이기 복선 좋아하는 잘하네
1: 잘하고
3: 아이 잘하네 아이 이게 뭐뭐 생각이
1: 오빠가 입에 마
0: 봐봐
1: 난 가리고 와클 손탈이
0: 봐봐
1: 난 봐봐 나 이리 며치니
0: 봐봐
1: 아이를 보내면 보내면 신가니 잘하고 잘하고 아이 이나 자는 시야 자는 볼까리 그래도 난 영신자로로 잘하고 잘하고 잘하네 잘하네
0: 잘하고
1: 잘하고 잘하고 잘
4: 왔어. 나시 갈라바시기 나하싱나 신전랑제두나 빵통레바 한덕세이 클래스 때 남승 클래스 투입 엑자미네이션도 막곡 달라바싱 오빠기 다루마시가 머리레나나 십게스키 팜범랑데 랭신 비너버기다먹다 하이저로보다 아라오라오나 야비라글라바 밍웨이나 판자라보다 십 인지나 사무 다이스 랭신 비크레 Sip gas na dice the lingzin bikrapa matunga sidi tharomasiga mari lenena ngan thoi na traditional dance makha utpi gani leng thok pirakshit ngan thoi

0: नाहरोल की खुंजल ताबीरे ताबीरी बसे आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल ने सथजरीबा थोरम परेंसिगी नशी निमिदांग पुंग मापल मिन मंगा लमकोईवारी निंसिंग बगी मिहुथोंदा थोरम असिदा ताबीगनी नोंथोंबम कुंजमोहन गा उनदन वारी छाबगी आहान बतांकक उनबिरिबे मनि थोरम पुथोकपा दिलीप मयंगबम हौजिक मथंगी थोरम मिकुप खरिगी मनुंगदा कंगला चैनल देगी ताबा फंबीरगनी
1: हौजिक कुंगंगी थोरम संदोकसरी

0: palem ima pukhabi sangai kobi aikhoina yarau tuban sa oirabasu tam khaba ipa ipudi namu taibangi thawaini mainawai tangnasam taibang makhoi chatnabi luda tongda pakhraba kaubangam denga sisu namom oibi aikhoina tabiyone palem taibang makhoi wahaida yarau oibi aikhoibu pagi wari kaidana pugi khungul muttana sangai koloi thonbiba kaibul lamjaugi mamom loi luang salai gi mapari kading magi khudolni malem da ani sudabi singtha biba nungsina namom oibi aikhoina pai makhai na penjai do kaubangam loi kaidau nungda
1: English singa masani pan ni phuni thoi ta John McLeland na sangai bu bigyan gi londa servers ildi ming thondo na sakta khi servers saibadi labagi kokhakta marin phunba masi ho basa aduga ildi haibana lokta khongban da sangai iha na na ukhiba farsi ilbu ikai khumna bani matamasi da manipur sangai bu servers ildi ildi haina khangnare McLeland na मणिपुर संगाईगी विज्ञान की मिंग धोन खिबगी वरीद कैप्टन गुथरी कौब इंजीनियर मना कसारदगी मणिपुर यौगोलंबी सेमलकपदा थोंगलकपनी हाइदना सी मवों मानबा सजी मसीयमा मिक्लीलेंदा पिरेई अदुगा महाक अपाम मतुंगिना सजी दुगे अनौब ममिंग थोनबसु हाइजराई मसीगी दमता मिक्लीलेना मतम कुइना असम की चीफ कमिश्नर गलोइनदुना मणिपुर द सथोक तसिन तोरंपा पारसी इल्दा सिथी इदुना सजी मसी सिगी मरमदा पाउहंगी
2: सानरब मरु नहाक ती मतम कुइना मणिपुर द सथोक तसिन तोरंबा ब्रिटिश मसाम ओइबना मफम दुगी सा उसेकी मरमदा ममुत्तान खंगमगनी कैप्टन गुथरीना सी मओ माना यामन चिंगलेमन फजब सजी मची खरा मणिपुर की फंगे मसी मियामन सखंगनद्रीब विज्ञान की ममिंग लेत्रीब सजी मखल अमगी ओरमगनी हाइबसी आई अमसुंग गुथरी अखोय अनिमकी चेना थाजबनी नहाकन सजी मखल सिगी मरमदा अखंग बलंगला लंगजिन लेरगदी मदुना सा सिगी अनौब ममिंग थोनबदा यामन तेंबांगनी खले कैप्टन गुथरी की अपाम मतुंग इन्ना सजी असिगी अनौब ममिंग थोनबदा करी काइबगे इंग लिसिंग मजनीपा निफू माथोयद अना इंडिकेशन ऑफ ए नन डिस्क्रिप्ट स्पेसिस ऑफ ए डियर हाइन मिंगठोलग फोंग की कलकत्ता नेचुरल हिस्ट्री की चेफों नगोद थाने नहा की पाखुम खौरांग नंगाइरी
3: मैक्लीलैंड पीरक्लिब खुदोल पारसी इल हरावने खम थेंगी इं लिसिंग चनिपाल निफू माथोय की मे की तांग कुन्माथोय मैक्लीलैंड हलप पाखुम असुम हाय
4: चानरब मरु अगर पांथोप ममलमदब थब नहाक पांथोलनी हैंगमदन नुगाइब फावी मफमदुगी मीसिंग संगाई हैना खंगनब अचौब सजी मखलदु इं लिसिंग चानिपाल कुन्था निपाल मणिपुर तंपा की खा नुंचुप्त लेब लुन नाना फजरब लोकता खोंगबान की चोट चोट लाब मफमदा कयारा खन उख्रे महाक मणिपुर तंपा की मफम सिंह नतना

0: नोमाइज नुमित खुदिंगी खुंगंगी थौरम दा परिंग नाइने संदोकचरी बसक्तम अनिसुबत तांकक्ता कैबुल लमजाउगी ममोम लोई गसिगी थौरमगी अरोइबो ओइना तामिनरी
1: ताजरे
0: अयिबा डाक्टर खांगेमबम समुंगौ
1: ओहोय
0: खोंजेलदा लाइश्रम नीलचंद्र अमदी खैराकबम मीनाक्षी अदुगा थौरम पुथोकपना नोंथोमबम रोमानी
1: ओहोय
0: थौरम सिंगासी ताहनजखिबगा लोइनाना ऐखोइगी खुंगंगी थौरमगी मतमसु लोइसिलकले तातोन
1: ओहोय
0: इसिलिपवासु अतांग स्वाइदा हनख्रसी
1: फनी फनी चलिबेम
0: खुंगंगी थौरम ताबिरिबसिंगबु इचिलिपवाना अमुक कहना
2: खुरुमजरी

0: सकता मसीदा तारा निथोई सुबा मणिपुर विधानसभा की निपान सुब मीफम लोसनखीबा उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन की मणिपुर खोंसर मी ललोनबद सेनबा मियोई मरी फागतखीबा तरेट सुब इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइस मणिपुर दसु पांथोखीबा अमसुंग पाव की सकतम दा जिरीबाम जिला की पाव दा गृह मंत्री गोविंद दास कोंथौजम हैरी मणिपुर हौकी लिसिंग अनी कुलुमदोई की मे अहुमदगी हौरखीबी इरांग असिदा तंगाई फदना मसागी इमुंग मनुंग याउना मरेबाग मरमदम कंजनबगीदमक थोरखीबसिंग असोय अंगाम थोंदनबा सरकार की सब साब फिरेप लै मणिपुर विधानसभा की निथौकाबा नुमित पांथोखीबा शॉर्ट लिस्ट डिस्कशनदा कांग्रेस की के रंजित अमसुंग थोकसोम लोकेश होरना इरांग मनुंगदा मरेबाग मजातिबु कंजनबगीदमक थोरखीबा नाहासिंग ngaihak लैतेना फाब पुनबगी थौंगसिंग जाथारकबगा मरी लेना असिगुमा थौंगसिंग तहोंदनबा आर्टिकल 153 की मखादा मखोइगी मराल कोपिनबा पुखलखीबु वाफमगी पाखुम पिरदुना श्री गोविंददास नहाई इरांग असिगी मनुंगदा थोकलखीबा नाहासिंग अदु इनसिल लगा खुलाई पहिनखीबा लैते मखोइ अदु ngakpiphom थुइ श्री गोविंददास नहाई
1: इसासिंग से सिंगदबु ओइरे तमदबु ओइरे अखुइन मखोइबु खुलाई पाइनना थौजिलुबसु नत्तबा मसा मसाना स्पोंटेनियसली अई कंदबया दे अई लकाय कंदबया दे अई मुंग कंदबया दे हेन थोकनर पंग तो ओइबा अमुक्त थोकिद्रबा मोंग थोकिबा लुरकली बदियो तुंगी युबेरे लोइगे दोरिबा अखुइ इसासिंग इनाउ सिंग से मतमदुदा महाकी लाइक लाइसु पुनम थादो ओगा कोलोम पाइगदो बखुत लाइक पाइगदो बखुत अदोना उतुब वातु नोंमई नोंमईसु लैतबा अदुना सरकार की माल खनादगी नोंमई कया लौरुबा पामगा खुलाई पाइबसु नत्तबा अदुगुमबा इसासिंगसे मतो करमना मखोइबो ngakani मखोइबो एखोइ ngak पिफम थोई मखोइ ngakखिदबा तारगदी अकीबना मरम ओइरगा दिंग बकाइबना मरम ओइरगा मखोइसिंगसि अतोपा लंबी अमदा अमुक चथ्रगा एंटी नेशनल ओइबगी वाखलोन भारत पुनुसिदबा भारत की प्रजा भारत की लोसिबु यादबा अदुगुमा मियोइ अमो ओइखिगद्रा मियोइसिंग ओइखिगद्रा हाइबगी में पाइबत अखोई सरकार असिदा अखोई लेजै मरमदुननि 2024 दसु मतमदगी चीफ मिनिस्टर ना अदुम लाखोपिकी मखोई सिंह असे एंटी नेशनल्स नते अदुना मखोई सिंह असे अखोई ना यारिब खै ngak नब होनगनि है
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हाइरी महिरुइ सिंहना थक्सी खासी खंगबा थौना लैबमदि लुसिंगबा अमगी मतिक मयाई सेनब होनगदबनि उपराष्ट्रपति की अहान मणिपुर खोंसट की मनुंग सन्ना लेबा कुपु नुमिता इंफाल ईस्ट जिला की पांगई दलेबा सैनिक स्कूल इंफाल की विक्रम भद्र हॉल द पांगथोबा थोरमदा श्री राधाकृष्णन नहाई धर्म जात बिजात लोल अमदि फुरुप की खैनबा थमदना इमा लेबा की याइफनब वाखल न मांगजिल थाना थाबक तोगदबनी राइज असगी मियाम की अखांग कनबा मदि कथोपगी वाखलोन बु इकाई खुमनब उलदुना उपराष्ट्रपति नहाई
2: lives in the character of its students and alumni. For 55 years, the school has sought to develop qualities, patriotism, physical fitness, moral courage, and a sense of responsibility. These are the great qualities that remain relevant, irrespective of the profession one ultimately chooses. The word Sainik itself carries a profound message. A soldier is not defined merely by a uniform. A soldier represents courage, duty, sacrifice, and commitment to do something larger than oneself.
0: Raise ki social welfare vibhagamadi Imphal East Police ki apunba kangbu amana sagol se numir ki ayuk angan bada mi lalon bada se naba miyoi mari phaki nupi masa amaka lauki. हिरमसिग मरी लेना नुमितु दा पौमी सिंग उनबमदा सोशल वेलफेयर विभाग की डायरेक्टर शैख अब्दुल हकीम नहाय महाक मसा याउना इंफाल एस के मनुंग सनबा कैबीदा थीबुहमगी थाबक सथबदा युम अमदगी नुपी मसा अमक कलब मतुंग सेनबनी हाइबा मियोई मरी फागतखी कलहौरबी नुपी मसा अदु मिशन शक्ति की मखादा वन स्टॉप सेंटर द पुरकतुना लखत पया बसिक्सल थौरांग सिंग लखतखी डायरेक्टर अब्दुल हकीम नहाय
3: प्राइवेट ऑफ सोशल वेलफेयर मणिपुर इंफॉर्मेशन लापी

पाओगी शक्तम ताबिरे ताबिरे बसे आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल ने हवी लानथोक्चरी अदोमना खौरां नंगाई थौरम गुड इवनिंग मणिपुर थौरम सिदा अदोमना टेलीफोन की खुथांग दा खंबीरकबा ताबिरिंग मणिपुरी फिल्म इसैसिंना अदोमबु खौरां नंगाईजरी थमजरी बा अखोई नंबर निंसिंग जगे 8798803293 नंबर सिदा कॉल तौबिरकलगा अदोनो खदाबिबा इसै खंबीरकबा यारगनी

0: हेलो हेलो
1: मैलो
0: गुड इवनिंग मणिपुर के रोबे कॉलर नी कनाव बीर बनो
1: हेलो सारे का फंड की बगे में तीन सात चार गए कम फंग फंग जे फराव
0: होय नकलम द खुद सक सारा खुद ओइना दम ट्राई तो गले बदो रोबे कॉलर रोबे के तो नी करी से खुदा बिगनी तक पियो
1: ตกฟรีตกเสียแล้วไปสู้แม่มากับปะเนี่ยซาเองอ่าไอ้เสียงตะคันใจอ่ะซาตักปิ้วรวยไปกว่าแล้วรวยไปกันด้วยนี่ถ้าตักปิ้วรสชาติถ้าจะได้ถ้าจะได้รวยไปกว่าแล้วนี่ใช่ตักปิ้วอ๋อ

0: ꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯕꯒꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯈꯥꯡꯌꯦꯝꯕꯝ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯟꯗ꯭ꯔꯦꯝꯕꯝ ꯁꯨꯔ, ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯔꯨꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯏꯂꯤꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯇꯝꯐꯥꯃꯅꯤ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫
1: जे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
0: ताबिरीबसे आकाशवाणी इम्फाल की मेगाहर्स सामगुहम दशमी मंगारा संतोक सरीबा FM संगाई चैनल ने हजुर नुमिदांगी पुंग मापल तारे मणिपुरी द पाउ ताबिरसी
4: आकाशवाणी इम्फाल गंगबम गंथोइन पाउ पाजरी ग्रिहमंत्री अमित शाह ने हाईरी मणिपुर लिसिंग चमापन याखे माथोइन बेजियर ओइदुना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC चनहनब केंद्र सरकार ने खनरी मांगना हाई मणिपुर की राजनीति दोल सिंह अमसुंग स्टेक होल्डर सिंह हिरमसी की मतंग वा खनरे अमसुंग सरकार ने मियाम की अपाम ताबग लोइनन वारेप लौगनी सरकार की मचिन चप मिसक अमसुंग MLA थोक्सम राधेश्याम ने हाईरी हंदक पांथोखिबा विधानसभा मिफम लिसिंग चमापन याखैमा थोइना बेजियर लौदुना NRC पांथोखनबगी वाफम खनखी केंद्र सरकार हिरमसी मतंगदा तक्सिनखिबा लैख्रै वाफम इम्फाल की बाबूपरादा लैबा CM सेक्रेटरियेट की दरबार हॉलदा पांथोखिबा पाउगी मिफम MLA राधेश्यामना फोंदोखिबनी पाउगी मिफम सरुक याखिबा श्री राधेश्याम MLA डॉक्टर सापम रंजन अनिना राइज सिदा हौखिबा सही खरा सिदा तंगदु लैतादबगी फिबम लैबना मियामना खम थेंगना वानारबा तंजा असिदा सरकार की लोइसंग सिंगलोन सिनबगी खोंजंग संगसिलिबा से हंदोकपिनबा अपील तौखी श्री राधेश्यामना मखतान हाय राइज सिगी MLA सिंगी मिहुत कांगबु अमा न्यू दिल्ली द सतुना केंद्रगी मंत्री सिंगा NRC मतांग द खनाखी मियाम की अपाम बदु येंगलगा केंद्र सरकार नसु सेंसस की थबक थरम सिंग येथोकनबो वारेप लौखी हौजिकसु मंत्री गोविंदास कोंथौजम याउना MLA सिंग न्यू दिल्ली द लैदुना लिसिंग मचमापन यांखैमा थोइना बेजियर ओइदुना NRC पांगथोक पिनाबा केंद्र सरकार द तक्सिली केंद्र सरकार नसु मियाम की इहुल खंगना थबक तरोकनी हाइबगी थाजबसु लै तमेंगलोंग जिला की तौसेम सब डिविजन की कैमाई पुलिस स्टेशन न कोनबा तोलें कुकी विलेज दंगसे अयोग अंगनबा मसा खंगदबसिंग नोमी कापसिलापुगी थौदोकता मतै मनाव सिरे अमसुंग सही नौरीबा मसान पासोकले एखोगी पाउमिना पुलिस की पाउपलदुन हाय थौदोक असे इंगसे अयोग पुंगमरी अद्वाइदा थोखिबनी थंगनाना लैबे युम अमसो अमांगता थोखलमले हायरी थौदोक अदुदा सही निफु तरेत सुरबि नुपी अदु खुदकता लैखिदे माकी मपुरेबादुना सिलचर हॉस्पिटल पुखतपगी लंबीदा लैखिदबनी असिबा हक्सांग अदु सिलचर मेडिकल कॉलेजता पोस्टमार्टम बिदमक पुख्रे हायरी थौदोक अदुबु MLA अवांगबो नियुमाइने यानिंगदबा फोंदोरकली वारोल अमदा MLA ना हाय खुलाई पाइदबा मिचम नुपी अमसुंग अंगांगदा खुथाबा सिपांगदबगी थौंगनी कांगलुप सिंगने हिंसा थादोकतुना राइजसेदा तंगदुलैताबा पुरकनबो होनबगी तंगाइ फदबा लै कैमाई नागा विलेज अथोरिटी ना अकनबा मोंगदा थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंदोरकली थौंग असि मतम सांगना नुंसि चानना लैमिनादुना लाकपा कांगलुप सिंगी मरकता सिंगनबा पोखनबा अमसुंग नुसीनदबा हेंगरहनबा मियोय खरना सिनबनी पुलिस नसु केस असे निंथिना इंसिनबिनबा विलेज अथोरिटी ना अपील तौरकली तौसेम एरिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन तासो नसु मिचम हाटपगी थौंग असि यामना कन्ना यानिंगदबा फोंदोरकली अमुको अमसुंग असिगा चेटमिनबा लुप पंगाना सिन्दुनांग असिदगी राइज असिदा लिसिंग मचमापन यांखै माथोइना बेजियर ओइदुना NRC पांगथोकनबा वाकत मिफम सथबा हौख्रे थासिगी तारा तारुक फाउबा तोंगा तोंगानबा मफमदा वाकत मिफम सथगनी ngasi ahubu numita nongpok panthoibi lairembi community hall kwakaithel thaunau jamlekai da leiba progressive youth development association da wakan mipham sing pangthokhi wakan mipham aduda lesing machama panya khema thoina bezier oiba NRC update taunaba manipur sarkar na bharat sarkar da thubada taksin gada bani amasong SIR lesing ni kuntaruk chanaba yaro haibana singbu slogan kya laukhi manipur IOCL retail outlet dealers association na नोने जिला द थाउपुबा ऑयल टैंकर द एटेक्स अथरखिबा दुबु यानिंग द बफुंग दोरकली ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛ-ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯎ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯈꯪꯉꯕꯣꯛ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ CPI ꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯆꯍꯤ 130 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯈꯪꯉꯕꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯑꯋꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯝꯐꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯉꯕꯣꯛ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥꯒ� ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗ ꯂꯩꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ CPI ꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯅꯕꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ

0: communist lo ni yakhar leftist ba ha leftist minded sing la ta ada imphal da manipur da ta unit am le masi gi maru secretary on na lai bana lai hidra longjam gi ta gan ni sino ai ate man nom hey nang gohati da khang na gi ni ekon em ta ming da nang iskas ki member or na e wo ge ne na malupa manga pi na mai pona bazar da ma se pharmacy to ro mi adu pham oi ate meeting ga di yaur de thona chumna ken to oi ru bai wat asu mai to 1974 se da elisa mahau da ai keno se sobet ai ko gi saitya academy mana se saitya academy mana phang masi da ta se elisa mahau se de eng mana pithok na ra pai do oi tai masi
1: da se ani shuba
0: awari man chan
1: nate sa manipuri lohan se saitya academy na mana pi ba gi ani shuba lai rik ni
0: samnhara da ilisam mahawara ge sakta kanu anu oira hanji punje monai do khang da ge ilisam mahaw ib ne harga di na popular da paisa su masin yam phangal ai ge adu gi ai gi khudong cham me asu tiwari me cha sin phangal anthi di phangna ma tung da nuang ma di ta ga nian si ga ngang ma hen rok bon mp ho ge
1: hoi
0: thong ma hen rok si ga no ma ek la ya khoi da khari gi ni tha tha chen dan la go de hey nang soviet ko ru ge ra hai ai kar mai na no na na ai koin tha dori mi na ai koin tha dori ni na koin ning de ba kana no koin ko ge nang paisa di khra lai ra ba ai lai paisa thok thok taw ne na de ra pha gi taw ni na paisa chang ngoi ya na ha de mai na paisa chang ngoi ta koi tha ga tu nu ngai paung ni to pha le ta ande
1: suk tha he tha je da na
0: suk tha tha je na
1: la yu to surprise chaw ba surprise ne
0: al ga masida ai gi life ki philosophy su ai mas ai tha je da masi chungra ne khale ai di gita gi wadon di kona gita gi wai je thengna bai wan nang na thau da tong chalo karma da tong chalo karma gi phol gi tamak ta nang phera da tau gan wai do masi ai yam tha je an na madu ai na kari gum lai tu idam de phangam da ko ba gi phudong cha si phangam da su ya ri pon anyway and the ming tha da ge ko na telegram se lai lai nang la wai na तम हेन्द्र तानेंग दी पासपोर्ट छो देख मैं तौर अस चत चलो मैं तो दिल्ली चलो चल चलगे त्रिपुरा की अमर गुप्त है त्रिपुरा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी अखो अनी टीम हो जर्नलिस्ट मैं खबर वीकली बांग्ला न्यूज पेपर फूंगे अखोनी टीम हो इसका ऑफिस थेंगनारे अभी पासपोर्ट कमाय तौने की जनरल इसका दिल्ली जब जनरल सेक्रेटरी कहीं बार अखोई थोक तौने इंडिया कहीं तौर इमरजेंसी से इंदिरा गांधी है सोवियत के मरी यम भो फोम से मैं फिलअप तक हल अखोई थोक तौने से पासपोर्ट ऑफिस चलो है नोवानी चलो मैं तौजरकने पासपोर्ट ऑफिस चलगे क्यू सांग कमाय तौनी लोबी वा लेते हे चकदरी हे
1: चितनी
0: हे चकदरी पासपोर्ट फंगदर उपाय ले अमर गुप्त से खड़ी मा खादी सेट ली फयोम सेट ली नेहरू कोर्ट अम लिट ली तुपी दी उपते मकई मरंग हाइफेट खा खेत खेल अब एंगे फर फर फर मान कांग्रेस की एम पी का मंत्री का माली वोसूरीद कांग्रेस ने कन्न तौर पालीना सोवियत के मरी से लेना मान चत पासपोर्ट ऑफिसर चत हाइनरुरी अखोई सूमान चकदबने अखोद लाख नोपोक्त लाइम वहाँ ही लाख पासपोर्ट फंगदे अखो चत तोप तार चतसे अखोई कैंसल तब तार कमाय तौनी ए कहीं चत याब्रने अमाय तौर मान हम पुंग अनी तार लौर पासपोर्ट गेट द पासपोर्ट रेडी है लाप अदाय तौना उमर गुप्त की फिजोन पासपोर्ट से नोगा फंगे फंग ऑफिस पीसल पासपोर्ट से यू गेट विजा कहीं नो सिर एयरपोर्ट लाओ एयरपोर्ट एवरीथिंग नंग कहोगी एक्सचेंज अदरने अखोई लेरमे एयरपोर्ट पुंग सूक्तुमे अदमायन तौना चलिए अखोई चांस तो
1: तारीख कनिंग
0: तारीख से अगस्त लोरमदायदन 1975 की अगस्त लोरमदायद मुजीबुर रहमान 1975 की 15 अगस्त मा से हाट की बांग्लादेश इरांग मरम दिल्ली इम्फाल दिल्ली पाइब प्ले

마더비 필름대기 아셈 빔라기 콘젤다 엘벙크 서머나 세링바 에스티젠드나 사랑바 이사이 마타비시

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:31 और 12 सेकंड तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है हर सिंगार हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं मगर आज के इस सफर का आगाज हम करेंगे एक ऐसे नगमे से जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है दोस्तों मोहब्बत सिर्फ दो दिलों के दरमियान का रिश्ता नहीं बल्कि ये वो खूबसूरत एहसास है जो इंसानों को इंसानों से और मुल्कों को एक दूसरे से जोड़ता है और जब कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक आपसी दोस्ती और सकारात्मक संदेश के साथ अपने अंजाम तक पहुंचती है तो उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई देती है आज ही समाप्त हुए ब्रिक्स समिट का सकारात्मक समापन भी हमें यही पैगाम देता है मतभेद अपनी जगह लेकिन बातचीत सहयोग और दोस्ती का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए और ऐसे ही जज्बात को बेहद खूबसूरती से आवाज देते हैं महेंद्र कपूर साहब फिल्म पूरब और पश्चिम के इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ भारत का रहने वाला हूं भारत की बात सुनाता हूं ये महज एक गीत नहीं बल्कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत अपनी पहचान पर फख्र और दुनिया के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने का एहसास है तो आइए दिलों में मोहब्बत रिश्तों में मिठास और दुनिया में अमन की दुआ के साथ आज के सफर का आगाज करते हैं उसी नगमे के साथ जो दिलों को जोड़ता है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपका दोस्त फेरोज, जहां हम पलट रहे हैं यादों की वो सुनहरी डायरी जो हमें सीधे लेकर चलती हैं सदाबहार रोमांटिक गीतों की दुनिया में। दोस्तों, मोहब्बत में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जोर से कहने की जरूरत नहीं होती, बस धीमे से कह दीजिए और सामने वाला दिल की धड़कनों में उन्हें महसूस कर लेता है। और ऐसा तब होता है जब आपको किसी से सच्ची मोहब्बत होती है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं मुकेश साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने, और यह नगमा है फिल्म गोरा और काला से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसी नगमे के साथ हर सिंगार के इस बेहद खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सर्वे पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आपके इस सफर में मैं हूं आपका दोस्त फिरोज और महफिल है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार और हर सिंगार किस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत फिल्म के एक गीत की दोस्तों कभी-कभी मोहब्बत किसी खत की तरह होती है जिसे पढ़ने के लिए अल्फाज की जरूरत बहुत ही कम महसूस होती है बल्कि एहसासात को महसूस करने की जरूरत होती है और जब इश्क सच्चा हो तो जमाना बदल जाए हालात बदल जाए मगर दिल की वफादारी कभी नहीं बदलती आज का ये अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है मोहब्बत की कहानी कहता है साल था 1967 का और पर्दे पर आई फिल्म फर्ज एक जासूसी और रोमांच से भरी कहानी थी फिल्म का निर्देशन किया था रविकांत नागाइश ने और इसमें नजर आए थे जितेंद्र और बबीता लेकिन इस सस्पेंस और भाग दौड़ से भरी कहानी के बीच एक ऐसा गीत आता है जहां जासूसी दुनिया कुछ पल के लिए पीछे छूट जाती है और दिल की आवाज सामने आ जाती है जो अपनी मोहब्बत का इजहार बेहद खूबसूरत तरीके से करता है यहां आशिक अपने महबूब से कह रहा है कि हमारा रिश्ता आज का नहीं ये तो जैसे सदियों पुराना है वक्त की दूरी हो या हालात की मजबूरी दिल की मोहब्बत अपनी जगह कायम है इस गीत को अपनी मीठी आवाज दी है लता मंगेशकर जी और मुकेश साहब ने अल्फाज हैं मशहूर शायर और गीतकार आनंद बख्शी साहब के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का तो आज की इस खूबसूरत शाम अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा नाम है जिससे आपका रिश्ता शायद बहुत पुराना महसूस होता है तो ये गीत उसी के नाम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां पर नगमा दिल पर गिरती हुई फूलों की खुशबू जैसा है हर नगमा और हर धुन किसी पुरानी मोहब्बत की याद तो चलिए रविवार की रात की इस रूमानी बेचैनी को आप भी महसूस कीजिए और सुनिए ये लाजवाब गाना सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that lab-grown diamond market, in terms of volume, is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far, as search and rescue operations continue around the vessel's

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
1: Dhanyavad Sarabjit aur namaskar shrotaon, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106। और जैसा कि सरबजीत पहले ही बता चुकी है, हम किसी खास म्यूचुअल फंड्स के बारे में सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। श्रोता, इससे पहले इन नंबरों से पहले हमारे फोन नंबर से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: Prime Minister Narendra Modi says New Delhi Declaration adopted at BRICS Summit will provide clear direction for shared vision and future cooperation. Global crude oil prices surged around 9% last week, and domestic investors to focus on US Federal Reserve's policy decision, macroeconomic data and geopolitical developments for Q's next week.
1: Pradhan Mantri Narendra Modi ne kaha BRICS शिखर सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा। पिछले सप्ताह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़त और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय, आर्थिक आंकड़ों और भू राजनीतिक घटनाओं पर।
0: And before we go just any further in the program, may we remind our listeners, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision.

0: We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: ये खबरों का सिलसिला शुरू करें आज की बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का इकोसिस्टम है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है श्री मोदी ने लचीलेपन नवाचार सहयोग और सतत विकास पर सत्र के समापन भाषण में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकृत नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करें इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे
1: इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में श्री मोदी ने कहा कि महामारियों जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकता है उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिक्स लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला सहयोग प्रारूप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक भरोसेमंद और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा नवाचार के तहत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा उन्होंने बताया कि भारत ने नए और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप नवाचार कोष का प्रस्ताव रखा है
2: इनोवेशन के अंतर्गत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क हमारे स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा इनोवेटिव और स्केलेबल सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए हमने ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा है ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा इसके माध्यम से एआई जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा
0: एंड आई कैन सी आवर फर्स्ट कॉलर कनेक्टिंग फ्रॉम दिल्ली जीवन जी स्वागत है आपका सवाल पूछिए
3: नमस्ते मैं करंटली एसआईपी कर रहा हूँ पराग वारेकर फ्लेक्सी कैप 10,000 बंधन स्मॉल कैप 8,000 और मोतीलाल ओसवाल मीट लार्ज कैप और मल्टी कैप में 8,000 और एक न्यू जो था एनएफओ आया था एचडीएफसी बैंक का निफ्टी 550 और 2525 का अराउंड 30,000 के आसपास इन सब में मैं कर रहा हूँ एसआईपी तो एक ये जानना चाह रहा हूँ मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और भी मैं 5,000 इंक्रीज करना चाहता हूँ इन्हीं में करूँ या किसी अदर फंड में करूँ ये फंड कैसे हैं क्या मेरे को वही लार्ज कैप फंड एलोकेट एडिशनल लेना चाहिए या यही मेरी नीड पूरी कर दूंगी
4: जीवन जी मेरे हिसाब से आपके फंड्स का चुनाव ठीक है आप कोई नया फंड ऐड करने से मुझे नहीं लगता कि कोई खासा ऐसी कोई कमी है आपके पोर्टफोलियो में जो आप जिसकी आपूर्ति के लिए आपको नए फंड की आवश्यकता है आप इन्हीं फंड्स में आप एसआईपी के माध्यम से लगा रहे हैं लंबे समय का अगर ये पैसा है तो उसके लिए मेरे ख्याल ये पोर्टफोलियो उपयुक्त है और इसी में आप जो भी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आपके पास है आप इन्हीं फंड्स में अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं
1: जी और अभी आशुतोष अगर हम फंड्स की हालत देखें अगर खासकर अभी जो पूरी दुनिया के हालात पर हम गौर कर रहे हैं और कई तरह के फंड्स पर हमारे जो श्रोता हैं उनकी दिलचस्पी जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में जब देखा था हमने कई श्रोता पूछते हैं कि विदेशी फंड्स में हम कैसे निवेश करें और किस तरह से हमें उसका लाभ मिल सकता है इस पर हम

0: चर्चा करेंगे आगे, अभी चलते हैं, एक खबर है हमारे पास कच्चे तेल से जुड़ी हुई।
1: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस नॉट शार्प वीकली गेन्स अमिड एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस ड्यूरिंग द वीक। ब्रेंट क्रूड नवंबर फ्यूचर्स सर्ज्ड 8.7% टू सेटल एट $104.61 पर बैरल। West Texas Intermediate Crude October futures soared 9.4% to end at $100.05 per barrel. Now we go over live to our correspondent in Dubai, Manish Shiva, for more updates from the region. Manish, oil prices rose sharply last week. Could you please provide us a quick recap of the developments in West Asia that led to this surge? And also, if you could tell us about the latest situation on the ground.
2: Hi, Sarojit. Of course, the resumption of US-Iran fighting early this month. Then, of course, the developments in Yemen, which started putting pressure on the Red Sea route of oil. And most recently, the drone attacks on the Saudi East-West pipeline. This route is estimated to carry almost 4-5% of global oil supply. Now, that has been temporarily shut. So, of course, we've seen a lot of pressure on the oil prices. The Brent is around 104. WTI is also around 100. Now, in terms of what is happening currently in the last 24 hours, there have been fresh claims by the Houthis of more attacks on Saudi infrastructure. This morning, an Iranian commercial vessel was hit by a suspected projectile in the Strait of Hormuz. So no relief there yet. In the midst of this all, though, there are some chances of diplomatic engagement tomorrow, that is on Monday. Iran and at least some Gulf states are scheduled to meet in Oman and discuss the possible way outs of reopening Strait of Hormuz. Not the complete reopening is what has been reported, but a certain movement may be allowed. However, it needs to be seen if all the Gulf states will actually participate in this meeting, and also without the involvement of the United States, whatever arrangements are actually worked out, we'll need to see if they actually are helpful in resolving this subject.
1: Well, after that update from Manish from Dubai, let's hear what Harish has to ask our next caller from Meerut. Harish ji, sawal puche.
3: Ma'am, mera sawal ye hai ki mere paas small cap, mid cap, flexi cap aur contra fund hai. Small cap mein meri 30,000 ki sip hai, mid cap mein 30,000 ki, flexi cap mein 25,000 ki, contra mein 10,000 ki. तो क्या ये 10 से 12 साल के टाइम होराइजन में एक बढ़िया कदम है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, और ये कंटिन्यू रहेगा 10 से 12 साल? बस ये है कि हो सकता है अगर इतना पैसा मैं इन्वेस्ट ना कर पाऊँ तो थोड़ा कम कर दूंगा या थोड़ा बढ़ा दूंगा, लेकिन करता रहूंगा। अब बस यही मेरे को उनसे पूछना था सर से कि क्या ये सही वो है चुनाव मेरा।
4: जी, आपने बताया तकरीबन आपका आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा आपका स्मॉल, एक स्मॉल और एक मिड कैप फंड में लग रहा है, और बचा हुआ आपका एक फ्लेक्सी और कॉन्ट्रा में। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है अगर आपके फंड्स का चुनाव सही है। बस आप ये ध्यान रखिएगा आपके पोर्टफोलियो में क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप की मात्रा काफी अधिक है, इस पोर्टफोलियो से मुझे लगता है कि कम से कम 60% आपका पैसा स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में निवेशित हो रहा होगा। तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, जब मार्केट उतार चढ़ाव के दौर से निकलेगी, जब भी मार्केट में क्रैश आएगा शायद आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा। तो वो उतार चढ़ाव से आपको उस दौर में आपको संयम बना के रखना होगा। ये एक फेयरली एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है, लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो इस पोर्टफोलियो में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको मार्केट गिरने से घबराहट होती है तो मुझे लगता है कि उस सर्कमस्टेंस में स्मॉल और मिड कैप में आपको अपना एक्सपोजर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए।
0: मतलब उससे पैसे हटाकर आप फ्लेक्सी कैप में या किस तरह के फंड्स में डाल सकते हैं?
4: जी, तो पहले तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप कुछ ना करें, आप इस पोर्टफोलियो को बरकरार रखें। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क को मॉडरेट करना चाहते हैं तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, आप जो अभी तक आपने निवेश किया उसको ना छेड़े क्योंकि आप उसको रिडीम करेंगे, टैक्स लगेगा। तो इंक्रीमेंटल जो आपके SIPs हैं आप उनको थोड़ा सा अपने फ्लेक्सी कैप और कॉन्ट्रा फंड की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं।
0: जी, अगले कॉलर है भोपाल से शंकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
5: नमस्ते मार्केट मंत्री।
0: नमस्कार
5: सर, ये SIF स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए ठीक रहेंगे होते हैं? क्योंकि अगर किसी के पास कुछ 10 लाख रुपए है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का होता है ऐसा कहा जाता है, इज इट राइट ऑफ नॉट? एंड सेकेंडली इसका

0: क्या होता है इसमें कब निकल सकते हैं एक साल के बाद जैसे उसमें होता है वैसे ही होता है एंड हाउ इट इज इन्वेस्टेड वी हैव टू हैव डीमैट अकाउंट और वी कैन सिंपली बाय एज वी बाय अदर म्यूचुअल फंड ऑन द एसबीआई म्यूचुअल फंड वेबसाइट और एनी अदर वेबसाइट तो अगर ऐसा इसके बारे में थोड़ा बताइए सर रिटेल इन्वेस्टर्स को हमको थैंक यू
1: जी तो पहले तो आपकी जानकारी बिल्कुल सही है कि इनमें मिनिमम टिकट साइज 10 लाख का होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स में भी थोड़े एफ्लुएंट इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रोडक्ट उनके लिए टारगेटेड है क्योंकि अगर आपके पास 10 लाख रुपए और आप एक एसआईएफ में लगाते हैं तो वो भी मेरा ख्याल मैं उसके अगेंस्ट ट्राई दूंगा क्योंकि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है तो जिन निवेशकों का कम से कम 50-60 लाख या उससे ज्यादा का पोर्टफोलियो है तो उसमें वो एसआईएफ फिर भी कंसिडर कर सकते हैं लेकिन मेरे लिहाज से अभी एसआईएफ काफी नए हैं जो सबसे पुराना एसआईएफ फंड है उसको भी अभी शायद अक्टूबर में एक साल कंप्लीट होगा तो बहुत नए फंड्स हैं आप अभी इनको ट्रैक करिए इनको समय दीजिए मेरे ख्याल में अभी इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में कोई बहुत ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नीड है जो कि ये फुलफिल करते हैं जो कि आपका एक साधारण म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं हो सकती कोई इन्वेस्टमेंट नीड तो इनमें इन्वेस्ट करने की जल्दबाजी नहीं करिए ट्रैक रिकॉर्ड इन्हें बनाने दीजिए अपने आप बातें सामने आएंगी काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड्स एसआईएफ्स तो अपने आप इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए पहले उसके बाद इसमें निवेश करने के बारे में फैसला कीजिएगा बाकी जहां तक इनके ऑपरेशनल मोडेलिटीज की बात है तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट करते हैं उसी तरह आप इनको खरीद सकते हैं बेच सकते हैं डीमैट अकाउंट की इनमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है तो जो लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो आप इनको उस सेंस में एक अलग तरीके के म्यूचुअल फंड ही आप समझ सकते हैं
2: All right, our next caller joins us from Maharashtra, Gurunath. Please ask your question.
3: जी मैम नमस्कार
2: जी नमस्कार
3: मैम मेरा क्वेश्चन है मैम ये जो म्यूचुअल फंड है मैं मतलब एसआईपी करके ही जाना चाहिए और जो फिलहाल जो हालात है मतलब मैं शेयर मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ शेयर मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है कुछ एफआईएसबी या फिर पैसा निकाल के ले गए डोमेस्टिक भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो मैम सर से मेरे को यही पूछना था कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का कितना प्रतिशत कनेक्शन रहता है क्योंकि मैं सुना हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और हम फिलहाल पैसे लगाना चाहिए किसी फंड में थैंक यू मैम
1: जी आपका पहला सवाल कि इनमें कितना कनेक्शन रहता है तो देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का 100% कनेक्शन होता है अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो कि आपका पैसा आगे आपके बिहाफ पर इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे उसी तरीके से आपका म्यूचुअल फंड भी बिहेव करेगा तो कनेक्शन भरपूर है कनेक्शन 100% है वही उतार चढ़ाव बस फर्क यही है कि क्योंकि आपके बिहाफ पर एक फंड मैनेजर जो कि एक प्रोफेशनल है सूझबूझ के साथ आपका पैसा लगाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो खराब कंपनी के स्टॉक से आपको बचाए रखेंगे अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश करेंगे लेकिन फिर भी जो उतार चढ़ाव है वो तो बाजार के अधीन है तो जब मार्केट गिरेगी तो कोई भी फंड मैनेजर एक इंटरिम लॉस से आपको नहीं बचा सकता तो आप ये मानकर ही इन्वेस्ट करिएगा म्यूचुअल फंड्स में कि उतार चढ़ाव का अनुभव तो आपको मिलेगा ही और उसको आपको धैर्य के साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा जहां तक आपका सवाल था कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं
4: जी वो होता है कि अभी जो हालात है मार्केट कुछ ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है या गिरावट है ऐसी हालत में क्या करना चाहिए एफपीआई पैसे निकाल रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो फिर भी कुछ कर ही रहे हैं
1: जी तो देखिए अगर आपके पास कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है कम से कम आप 5-7 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप एसआईपी के माध्यम से मार्केट में निवेश करिए और एक लंबे समय के इन्वेस्टर के लिए तो एक्चुअली निवेश करने का अच्छा टाइम है जब मार्केट में गिरावट है तभी आप लंबे समय में एक अच्छे प्रॉफिट का अनुभव कर पाएंगे तो अगर आप 5-7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखने में सक्षम है तो कोई दिक्कत नहीं है आप एसआईपी के जरिए अपना निवेश शुरू कर सकते हैं
2: Alright, moving on with some more news stories. External Affairs Ministry today said there have been a number of concrete, practical development-oriented outcomes during the BRICS summit, which concluded today. Briefing media in New Delhi this afternoon, Secretary ER in the Ministry, Sudhakar Dalela, said there are over 50 concrete

0: outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's leadership this year. He said BRICS has maintained consistent position on need for UN reforms. India would like to have more engagements with BRICS nations going forward. Mr. Dalela informed that the session also received the report of the BRICS Business Council and BRICS Women's Business Alliance to bring the voice of businesses and particularly of women in business directly before leaders.
1: जी आशुतोष, हम बात कर रहे थे विदेशी फंड्स की, विदेशों में निवेश करने वाले फंड्स की और नैसडैक में जो असर हो रहा है, लेकिन अभी कुछ समय में देखा गया, अभी पिछले कुछ दिनों में, कि नैसडैक का जो ETF है उसमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दी है. इसकी वजह क्या है और आम निवेशक को कितना लालच करना चाहिए उसे देख कर?
2: जी, तो इसका रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिन में ये देखा गया है कि जो इंटरनेशनल ETFs हैं, नैसडैक या S&P 500, नैसडैक Q50 को जो फॉलो करने वाले ETFs हैं, उनके जो स्टॉक, उनका जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड प्राइस है उसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है और NAV से ये फंड्स काफ़ी अत्यधिक प्रीमियम पे हैं, 40-50% के भी प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि अभी हाल फिलहाल तक इनकी जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता था वो ये NAV से 20% ऊपर या नीचे के दायरे में ही हो सकता था. इनके ऊपर वो दायरा था, उसके ऊपर सर्किट लग जाता था. दो दिन पहले की NAV से ये 20% से ज़्यादा मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन हाल फिलहाल में इनकी ट्रेडिंग के जो प्राइस है उसकी रिस्ट्रिक्शंस में चेंज किया गया है और अब उसको उनके पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से एंकर कर दिया गया है, ना कि NAV से. तो अगर पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम पे है, आज और उसके ऊपर प्रीमियम बढ़ जाएगा, कल उसके ऊपर और बढ़ सकता है. तो अभी प्रीमियम की जो मात्रा है इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये ट्रेंड देखा गया है इंटरनेशनल ETFs में ही. ये रूल अपने आप में कोई गलत नहीं है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के ऊपर इसी तरह से ट्रेडिंग के रूल लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ETFs में प्रॉब्लम यह है कि नई यूनिट्स क्रिएट नहीं हो सकती, RBI की लिमिट्स हैं. तो इसलिए जब भी ये देखा गया है कि जब भी कोई चीज़ प्रीमियम पे ट्रेड कर रही होती है तो उसकी नई यूनिट्स क्रिएट होती हैं, सप्लाई उसकी यूनिट्स की बढ़ जाती है और दाम अपने आप NAV के नज़दीक आ जाता है. इन फंड्स में वो मैकेनिज्म अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि नई यूनिट्स क्रिएशन पे पाबंदी लगी हुई है. तो इस कारण से डिमांड इनकी है, सप्लाई और मार्केट में नहीं आ पा रही है. तो वो एक जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे प्ले में है, उस वजह से ये काफी प्रीमियम पे हैं. अब सवाल ये है कि निवेशकों के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन है. तो आप अगर किसी भी विदेशी ETF में निवेश करने की, इंटरनेशनल ETF में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जरूर चेक करें कि वो NAV से कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कोई फंड अगर 50% प्रीमियम पे है तो ऐसा हो सकता है कि अगले दो साल में वो बहुत अच्छे रिटर्न दे, 40-50% भी रिटर्न दे, लेकिन अगर उसके बाद ये प्रीमियम वापस नीचे आ जाता है तो दो साल होल्ड करके भी शायद आप लॉस में रहें. तो ये आज की डेट में ऐसा है कि कोई 100 रुपए की दाम वाली चीज आप 150 रुपए में खरीद रहे हैं, तो इसमें आपको काफी केयरफुली, अगर आप स्टॉक मार्केट पे ETF की यूनिट्स खरीद रहे हैं इंटरनेशनल ETF की, तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.
1: जी, यानी ज्यादा हीटेड बाजार अगर दिखाई दे तो दूर ही रहे.
2: जी,
0: सो आई हैव बीन लिसनिंग टू ऑल योर पीस ऑफ एडवाइस वेरी केयरफुली आशुतोष, एंड यू स्पोक अबाउट रिस्क एपेटाइट, यू मेंशन टाइम होराइजन, नॉट रिएक्टिंग टू एवरी मूवमेंट इन द मार्केट. So, is consistency and patience, are these the key attributes when it comes to investing in the mutual fund industry?
2: Oh, absolutely. In fact, there is a very old adage which is said that time in the market is far more important than timing the market.
0: Well said.
2: So, a lot of people try to time their entry. They want to buy when the stocks are at their lowest and exit when they are at the highest. You know, on paper sounds a very noble concept, but in practice it is almost next to impossible to implement. So you just have to remain disciplined. Keep investing periodically. Match your investments to your cash flow patterns. You earn monthly, you save monthly, and you invest monthly. And if you keep doing that with discipline through the ups and downs of the market, let the growth of the Indian economy is and is likely to continue to be among the world's fastest growing major economies for decades from here. Let that momentum work for you and let that tailwind earn you the wealth.
0: If time permits, we'll come back to this interesting discussion. Meanwhile, let's hear from Dev, who connects with from Faridabad, what his question is.
3: Hello.
1: Ji, Dev, apna sawal puchhe. जी सवाल
3: सर, मेरा मेरे बेटी अभी 18 साल की हुई है और मुझे उसके लिए कुछ फंड खरीदने हैं, लमसम वॉन्स लगाना है और अजन 5 से 10 साल का है और मेरे पास फ्लैक्सी का फंड ऑलरेडी है, एक लास्ट स्टेप भी है, एक पीएससी है और ईएलएसएफ है, ये फंड मेरे पास 2021 से है सारे और अभी मुझे बेटी के लिए कुछ फंड खरीदना है तो किस पे मुझे लगाना चाहिए, मेरे पास अलग अलग एमसीज के फंड है एक्चुअली।
2: जी आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, अगर आप इन फंड से संतुष्ट हैं, इनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है, ठीक ठाक है, आपको अच्छे रिटर्न दे रहे हैं तो कोई नया फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप इतना ही देख सकते हैं क्योंकि आप अपनी बिटिया के लिए पैसा ही लगाना चाहते हैं, अगर एक यंग एज पर अगर अच्छा टाइम होराइजन आपके आगे है, रिस्क एपिटाइट है तो आप थोड़ा पैसा किसी स्मॉल कैप फंड में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एग्रेसिव आपका पोर्टफोलियो बनाएगा, थोड़ा आपका पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन रिटर्न बूस्ट करने के लिए अगर आप 10-12% अपना पैसा इस पोर्टफोलियो का एक डेडिकेटेड अच्छे स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं तो कोई बुराई नहीं है। बाकी आपके पास जो फ्लेक्सी कैप वैल्यू फंड्स हैं आप उनमें निवेश करते रहें। ईएलएसएस का अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो ईएलएसएस में कोई इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करने का कोई बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं है क्योंकि आपको न्यू टैक्स रिजीम में ATC के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप ईएलएसएस फंड उस केस में बंद कर सकते हैं। और अगर आपको नया फंड ऐड करना ही है तो स्मॉल कैप जैसे मैंने बताया या फिर आप मल्टी कैप फंड ले सकते हैं जिसके थ्रू भी आपको मिड और स्मॉल कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है जो कि आजकल फ्लेक्सी कैप फंड्स में अब कम देखने को मिलता है।
1: जी और नजर डालें FPIs के हाल पर, इस महीने अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs ने भारतीय बाजार से पैसे निकाले हैं, जुलाई और अगस्त में उन्होंने लिवाली की थी। ताजा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कारण निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित हुई है। इसके चलते सितंबर में अब तक FPIs ने घरेलू शेयर बाजार से 13,138 करोड़ रुपए की निकासी की है। कुल शुद्ध निकासी में से 14,474 करोड़ रुपए की राशि शेयर बाजारों से निकाली गई। हालांकि प्राथमिक बाजार के माध्यम से FPIs निवेश का रुझान सितंबर में भी जारी रहा। इस महीने अब तक FPIs ने प्राथमिक बाजार में 1,336 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और अगले कॉलर है हमारे दिल्ली से वरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्कार। सर मुझे पूछना है, जैसे एक मल्टी कैप काफी फेमस मल्टी कैप फंड है, आप लोग नाम लेने मना करते हो फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो उसका अभी प्रदर्शन काफी खराब क्या है, मतलब उतना लोग कहते हैं साइज बहुत बड़ा हो गया और उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, अब क्या सर आप समझ ही गए होंगे, तो उसमें क्या सर इन्वेस्ट स्टेट रहना चाहिए, मेरा सीप में भी यूज मनी जा रहा है उसमें, ना क्या उसको बंद करके उसका साथ में जो दूसरा फंड है जो अभी जो वैल्यू रिसर्च का हिसाब से जो अच्छा फंड है उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। थैंक यू
2: जी। देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी इवन द बेस्ट ऑफ फंड्स गो थ्रू पैचेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, कोई भी फंड मैनेजर जादूगर नहीं होता है कि वो हर तरह की मार्केट कॉन्टेक्स्ट में हर तरह की स्थिति में अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो फंड्स भी अपने उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे पीरियड्स आते हैं, ऐसे फेजेस आते हैं कि जब वो अंडर परफॉर्म करते हैं तो एक एक दो दो साल तक भी वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो आपको उतना धैर्य बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर फंड है जो कि आपके होल्डिंग पीरियड पे उसने अच्छे रिटर्न्स दी हैं और आपको फंड में और कोई डिस्टर्बिंग चीज़ नहीं दिखती है कि जैसे उसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है अगर वो अचानक से बहुत चेंज नहीं हो गया है, फंड मैनेजर चेंज नहीं हो गया है, तो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो किसी डेफिनेटिव रीजन से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा कोई खास चिंता की जरूरत नहीं है, फंड को टाइम दीजिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अब आपका सवाल कि इसमें आपको SIP जो आपका कंटिन्यू हो रहा है वो बनाए रखना चाहिए कि नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि वो डिसीजन आप इस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में बाकी कितने फंड हैं, इस फंड का कितना वेटेज आपके पोर्टफोलियो में है। अगर ये फंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में 25-30% वेटेज है इसकी, तो मेरा ख्याल आप इसमें अपना SIP बंद करके डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड इंडिविजुअली, तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें और पैसा लगाना है या नहीं।
1: जी और देखें पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहा। MCX में अक्टूबर अनुबंध के सोने का वायदा भाव सप्ताह के दौरान लगभग स्थिर रहा और 1,52,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दिसंबर अनुबंध की चांदी में 1.1% की गिरावट आई और ये 2,34,974 रुपये प्रति किलोग्राम

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं गुनगुनाना चाहते हैं और उस पुराने दौर में वापस कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं वो दौर जो हमेशा के लिए अमर हो गया उस दौर के नगमे उस दौर की फिल्में हमेशा के लिए अमर हो गई उसी दौर से एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं 1960 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म कोहिनूर से इसमें आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और लता जी की इस फिल्म के गीतों को लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है नौशाद साहब ने तो आइए आज के इस सफर का आगाज करते हैं इसी बेहद खूबसूरत फिल्म कोहिनूर के इस बहुत ही प्यारे नगमे के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

मन्नाडे साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में यह नगमा था फिल्म चोरी चोरी से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में अगला नगमा बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। आज के इस सफर में हम लेकर चलेंगे 1951 के उस दौर में जब हिंदी सिनेमा अपनी एक नई पहचान बना रहा था और फिल्मी गीत महज मनोरंजन नहीं बल्कि जज्बातों की जबान हुआ करते थे। फिल्म थी आवारा, राज कपूर की वो यादगार फिल्म जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को देश की सरहदों के पार भी पहचान दिलाई। फिल्म में राज कपूर और नरगिस की जोड़ी ने पर्दे पर मोहब्बत, मासूमियत और इंसानी जद्दोजहद की ऐसी तस्वीर पेश की जिसे आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है दम्बर जो उधर मुंह फेरे। ये बेहद खूबसूरत नगमा इस गीत को अपनी आवाज दी है मुकेश साहब और लता मंगेशकर जी ने। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत से सजाया है मशहूर व मारूफ जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की। मुकेश की आवाज में जहां दर्द की एक खामोश लहर महसूस होती है, वहीं लता जी की आवाज में मोहब्बत की नजाकत और चंचलता है। दोनों आवाजें मिलकर इस गीत को एक ऐसी रूमानी संवाद में बदल देती है जिसमें प्यार भी है, छेड़छाड़ भी और एक दूसरे से दूर होने का डर भी।

पहला फिल्म का ये नगमा था और ये फिल्म आई थी 1951 में, आवाजें थी मुकेश साहब और लता जी की। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल थी आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत में ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये नगमे आपको कैसे लगे, हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए। और उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे fmgoldia@daily@gmail.com पे। इसी के साथ मुझे यानी फिरोज़ को अब दीजिए गीत मेरे मनमीत से इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे अगला प्रोग्राम जिसे लेकर हाजिर रहेंगी आपके बीच मंजू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान मिस्र इंडोनेशिया फिलीपींस दक्षिण अफ्रीका बुरुंडी नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान साहित्यकार शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे जीवन में ऊर्जा ज्ञान और सकारात्मकता लाता है क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे
2: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. The External Affairs Ministry said the BRICS summit in New Delhi produced a number of concrete and development-oriented outcomes. Briefing the media in New Delhi yesterday, Secretary Economic Relations in the Ministry, Sudhakar Dalela, said more than 50 concrete outcomes had been achieved across various thematic tracks, describing this as a significant achievement of India's BRICS chairship.
3: India's chairship has focused on deliverables. The summit has endorsed a substantial package of outcomes across our four priority pillars. There are concrete over 50 outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's chairship this year.
2: Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interests, and exchange views on regional and global developments. India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman. In a statement, the Indian embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav released the 40th installment of the Mukhya Mantri Ladli Behna Yojana from Agar Malwa yesterday. More than 1,835 crore rupees were directly transferred to the bank accounts of over 1 crore 25 lakh eligible women across the state. During his visit to Agar Malwa, Dr. Yadav also laid the foundation stones for development projects worth more than 225 crore rupees. President Draupadi Murmu has extended greetings on the eve of Ganesh Chaturthi. In her message, the president said that Lord Ganesha symbolizes wisdom, prosperity and auspicious beginnings. President Murmu prayed that Lord Ganesha brings happiness, peace and good health and prosperity into everyone's lives. In women's cricket, India defeated Sri Lanka by 72 runs in the final of the Women's T20 Asia Cup in Dubai tonight. Batting first, India scored 183 for 5 in 20 overs, while Sri Lanka managed 111 for 7 in their 20 overs. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the first T20 international of the three-match series in Delhi tonight. And that is the end of this news bulletin.
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
5: पोस्ट बॉक्स नंबर 111
6: नमस्कार पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी मन की बात में जिन विषयों का उल्लेख करते हैं जिन हस्तियों का वो जिक्र करते हैं उन्हीं को हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। उन विषयों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया स्वनिधि योजना का। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हम सभी के समक्ष है। आत्मनिर्भर भारत के पावन संकल्प को धरातल पर साकार करती पीएम स्वनिधि योजना ने अनगिनत छोटे व्यवसायियों के जीवन में उम्मीद का एक नया सवेरा जगाया। आज हमारे बीच एक ऐसी ही कर्मठ और स्वाभिमानी लाभार्थी उपस्थित हैं, साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना आखिर क्या है, किस प्रकार से इसका लाभ लिया जा सकता है और कैसे ये लाखों लोगों के जीवन में एक उम्मीद जगा रही है। तो मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ हैं श्री शैलेश कुमार, आप महाप्रबंधक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। शैलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद नीलम जी।
6: हमारे साथ हैं श्री राजेश कुमार, आप महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद नीलमा जी।
6: और हमारे साथ हैं श्रीमती बबीता शर्मा जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। बबीता जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
9: आपको सबको मेरा नमस्कार है और सबको धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं सबके बीच में आमंत्रित हो पाई।
6: तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं अपने विशेषज्ञों से, हम इनके जवाब जानेंगे और साथ ही योजना के बारे में आज हमारी जानकारी बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इस योजना यानी स्वनिधि योजना का उल्लेख किया है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती है, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास
7: और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
6: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आइए अब हम अपने उन सवालों के जवाब जानते हैं जिनके कुछ जवाब हमारे पास पहले से हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच हैं, तो ये हमें बताएंगे कि किस तरह से छोटी छोटी मदद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाती है, और जब जिंदगियां बदलती हैं तब देश किस तरह से बदलते हैं। तो शैलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना, तो किस प्रकार से आप इस योजना के बारे में बताएंगे, कैसे रेड़ी पटरी विक्रेताओं के साथ ये जुड़ी है योजना?
8: धन्यवाद नीलम जी मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए, और मैं इसमें बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं सड़कों पे, फुटपाथ पे, गलियों पे, और उनको हम कैसे और उनका जीवन स्तर हम उठा सकते हैं और उन्हें और समृद्ध बना सकते हैं। सो इस संदर्भ में आपने हमें मौका दिया है कि हम इस योजना को उनके बीच कैसे सरलतम रूप से प्रस्तुत कर पाएं। प्रधानमंत्री महोदय ने इस पे दो उदाहरण दिए हैं अपने मन की बात प्रोग्राम में, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा। यह योजना बहुत ही सरल है। जो भी वेंडिंग का काम करते हैं, हॉकर्स हैं, किसी भी सड़क मोहल्ले गली में काम करते हैं, जैसा आपने कहा कि कुछ रेहड़ी और जो ठेला लगाते हैं या छोटे मोटे खोखे लगाते हैं, वो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, निबंधन कराना पड़ेगा। जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हम लोग बोलते हैं, वहां उनको एक प्रमाण पत्र जारी होगा वेंडिंग का, और उसके बाद केवल एक आधार की जरूरत है। और कुछ राज्य हैं जैसे असम और मेघालय, वहां पे मतदाता पहचान पत्र की जरूरत है
6: जी।
8: बस इतने ही कागजात के आधार पे वो आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए एक पोर्टल भी है और ऐप की भी सुविधा है, उसके थ्रू वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो स्थानीय निकाय के लोग होते हैं, शहरी स्थानीय निकाय के लोग, वो लोग भी उनकी मदद करते हैं अप्लाई करने में, आवेदन करने में। और ये लोन आज के डेट में पूरी तरह डिजिटल हो गया है, उन्हें किसी शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपना जो दिन भर का काम है वो भी कर सकते हैं, और साथ में वो लोन भी ले सकते हैं। उसमें केवल आधार में जो मोबाइल नंबर रहता है उस पे कुछ ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी को डाल करके वो अप्रूवल मिल जाता है और खाते में उनके ये पैसा आ जाता है। तीन चरण में ये योजना है। पहले चरण में हम अब 15,000 रुपये तक देते हैं
6: जी,
8: और इसमें ब्याज की भी चिंता नहीं करनी है। ब्याज में 7% की सब्सिडी, यानी अगर आपका जो भी ब्याज लग रहा है उसमें 7% जो सब्सिडी है वो सरकार देती है, और 15,000 का जो ऋण मिलता है उसे चुकाने के लिए लगभग 12 महीने का समय मिलता है। और इसको जो है वो चाहे तो इसका अर्ली भुगतान भी कर सकते हैं, और वह मिनिमम 6 महीना है। 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद इसका भुगतान करने के बाद दूसरे चरण का लोन मिल सकता है, और वो 15,000 के बाद जो अगले चरण का लोन मिलेगा वो 25,000 का होगा
6: जी।
8: और अगर वो उसे भी चुका देंगे, उसके लिए 18 महीने का समय मिलता है, फिर जो अगले चरण का जो ऋण मिलेगा अब वो 30,000 से बढ़ के 50,000 हो गया है। और इसमें क्रेडिट कार्ड की भी अब सुविधा है, अब क्रेडिट कार्ड का भी लिमिट मिलता है, ताकि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो होलसेलर हैं, जो थोक व्यापारी हैं, उनसे नॉर्मली ये लोग अपना सामान खरीदते हैं जो बेचते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपने थोक विक्रेता से, जिनके यहाँ से ये अपना सामान लाते हैं, वो क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं
6: जी। मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के एक से ज्यादा सदस्य इस तरह का काम कर रहे होते
8: जी,
6: हैं
8: जी, जी।
6: तो अगर किसी एक व्यक्ति ने बैंक से स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण लिया है, तो क्या अन्य सदस्यों को भी मिल सकता है?
10: जैसा कि शैलेश जी ने मुक्त जो योजना है उसका पूरा पूरा बताया है
6: जी।
10: इसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, और वो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, और एक COB जिसको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग कहते हैं, जो अर्बन लोकल बॉडी शहरी स्थानीय निकाय करती है। अगर घर के सदस्य अलग अलग कार्य में लगे हैं तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित हो सकते हैं, उनकी पात्रता है इसमें
6: जी।
10: सबसे बड़ी जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ पीएम स्वनिधि लाने का, इसके द्वारा जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल ग्रुप था, जिनको कोई बैंक में खाता तो है बट जानकारी नहीं थी, उनको जोड़ा गया, तो उनको एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि अर्बन लोकल बॉडी का बहुत बड़ी भूमिका है और उसके बाद बैंक की भूमिका है कि उनको हैंड होल्डिंग करे कि डिजिटल से अवेयरनेस, चाहे वो लोन देते वक्त जब हम देते हैं लोन तो उनको QR कोड भी देते हैं, तो बैंकों की जो भूमिका रही है ना वो डिजिटल अवेयरनेस में बहुत ही सक्रिय रूप से उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया, ताकि आप देखिए कि हर ठेले खोमचे शॉप पे आपको QR कोड हर बैंक का मिलेगा और कितनी सुविधा हो गई है। हमारे लोग हो सकता है कम पढ़े लिखे हों लेकिन उनको जब ये हैंड होल्डिंग उनके जो काम किया गया तो वो उसमें भी डिजिटल में भी बहुत ही सफल हुआ। तो ये सब PM स्वनिधि, जो कहते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर निधि, तो इसका मुख्य काम यही था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वह जागरूकता कैसे लाई जाए, चाहे वो डिजिटल हो या बैंकिंग से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में हो
11: जी।
10: तो अर्बन लोकल बॉडी और बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रही इसको सफल बनाने में और इसको आगे भी ले जाएंगे। तो मेरा है कि लोग को बताने पर, हैंड होल्डिंग करने पर वो सब समझदारी उनके अंदर आ जाती है जो कि इसको सफल बनाया है।
11: चाहे शुरुआत में वो जाना चाहे एक बार, लेकिन जब वो समझ जाते हैं पूरी प्रक्रिया तो आसान प्रक्रिया है,
10: बहुत ही आसान
11: प्रक्रिया है। कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से ऋण ले सकते हैं और उसकी किस्त भी चुका सकते हैं जी। ये आपने बताया बबीता जी, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपका नाम लिया है, आपका जिक्र किया है और आपके नाम से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं, प्रेरित हुए हैं। आप बताएं कि लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या बात आपसे कर रहे हैं आजकल?
9: मेरे पास बहुत कॉल आते हैं
11: जी,
9: जैसे DM जी से मिल के आई हूँ तो उन्होंने मेरा सम्मान किया है और डूडा विभाग से जहाँ से मैं ये योजना का मुझे लाभ मिला तो वहाँ भी मुझको सम्मानित किया गया था। तो मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगी कि इस लाभ को लेने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। किसी को भी इतनी दिक्कत है कि मतलब छोटे छोटे लोन नहीं ले पाते, पहले नहीं मिलता था, मुझे भी नहीं मिलता था कि गारंटर जरूर चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अपना आधार कार्ड ले जाकर और एक पीला कार्ड बनता है जो लाभार्थी का बनता है, वो बहुत जरूरी है, उसको लेकर अगर जाएंगे तो लोन बहुत जल्दी से अप्लाई होता है, कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है और मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ। तो मैं तो यही चाहूंगी अगर आप किसी भी को भी योजना चाहिए तो अपना पीला कार्ड और आधार कार्ड लेकर जरूर जाएं
11: जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी जब आप अपना काम कर रही थी तब शुरुआत में किस तरह की दिक्कतें आई, कैसी परेशानी आई?
9: मैंने लॉकडाउन से पहले जब कोरोना काल हुआ था उस टाइम पे मेरा काम था
11: जी,
9: लेकिन कोरोना काल आने के दौरान मेरा काम बिल्कुल बंद हो चुका था
11: जी।
9: तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो लेकिन एक मेरे भाई हैं जो डूडा विभाग में ही काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पीला कार्ड बन रहा है बहन, उसको बनवा ले और उससे तुझे थोड़ी सहायता मिलेगी। तो मैं पीला कार्ड बनवाने के लिए मैं गई थी डूडा विभाग में, तभी मुझे सारी टीम ने मुझे समझाया कि इससे 10,000 रुपए का लोन लेकर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं
11: जी।
9: तो मैंने 10,000 का लोन लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और मेरा काम थोड़ा अच्छे से चला
11: जी। बहुत अच्छी बात है, आपसे और भी मैं सवाल करूंगी। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
9: मेरी पसंद का गाना है मदर इंडिया मूवी का, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।
11: आपने बहुत ही प्रेरित करने वाला गाना चुना है, लीजिए आपकी पसंद का यही गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। हमारे विशेषज्ञ इस समय हमारे साथ हैं। हमारे साथ श्री राजेश जी हैं, आप महाप्रबंधक, शैलेश जी महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और श्री राजेश कुमार महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से। और हमारे साथ इस योजना की लाभार्थी हैं श्रीमती बबीता शर्मा। शैलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बबीता जी ने जिक्र किया पीले कार्ड का, क्या ये वही वेंडर्स कार्ड है जिसकी आप उल्लेख कर रहे थे?
1: ये अर्बन लोकल बॉडीज इशू करती है, जो शहरी स्थानीय निकाय है वो इशू करते हैं
0: जी।
1: लेकिन अब इस योजना का विस्तार जो है शहरों से निकल कर छोटे छोटे कस्बों में भी जा रहा है
0: जी।
1: सो वहाँ पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनको दिया गया है कि वो एक LOR इशू कर सकते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो वैसे जगहों के लिए जहां अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है, वहां पे जो वीडियोस LOR इशू कर रहे हैं यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा पत्र जो इशू कर रहे हैं
0: जी,
1: उसके आधार पे भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है
0: जी। जैसा कि बबीता जी ने भी जिक्र किया, पहले ये धारणा थी कि अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो हमें किसी ना किसी तरह की गारंटी जो है वो देनी पड़ेगी, और ये आश्वासन देना पड़ेगा बैंक को कि हम आपका लोन जरूर चुकाएंगे। मैं विशेष तौर से आपसे जानना चाहूंगी, स्वनिधि योजना से जुड़ी क्या इस तरह की कोई नियम और शर्त है?
1: बिल्कुल नहीं, ना ही किसी की गारंटी देनी है, ना ही कुछ भी आपको अपना संपत्ति या कुछ भी बंधक में रखना है। और जो लोग ठेला वगैरह चलाते हैं वो ठेला भी, उसमें भी कुछ लागत लगती है उनकी, तो उस पे भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है
0: जी।
1: ना ही मॉर्गेज क्रिएट होता है, ना ही हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो पूरी तरह से उनके खाते में ये पैसा मिल जाता है। जैसे बबीता जी ने बताया कि इन्हें 10,000 का लोन पहली बार में मिला था
0: जी।
1: अब ये राशि बढ़कर 10,000 से 15,000 हो गई है। और जैसे कि राजेश जी ने बताया कि हर वेंडर्स के पास हम लोग QR कोड लगा रहे हैं ताकि जो भी वो खुदरा बिक्री करते हैं उसका लेन देन जो है डिजिटली हो जाए
0: जी।
1: तो उस पे भी उन्हें कैशबैक मिलता है। और जिस थोक विक्रेता से वो अपना माल खरीदते हैं
0: जी,
1: उसको भी अगर वो डिजिटल लेन देन करते हैं तो वहां पर भी कैशबैक है। वहाँ पे भी 2,000 रुपये के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे उनको कैशबैक मिलता है
0: जी। यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि किन्हीं परिस्थितियों में अगर जिसने ऋण लिया है वो ऋण ना चुकता कर पाए बैंक का, तो ऐसे में क्या होता है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या कोई दंड का प्रावधान है?
1: इसमें जैसा आपने कहा कि कोई गारंटी लगती है कि नहीं लगती है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की एक संस्था है CGTMSE
0: जी,
1: जो सिडबी के द्वारा प्रमोटेड है, प्रायोजित है। तो यहाँ पे सरकार इसका गारंटी फी देती है इस संस्था को, तो ये ऋण जो है उस संस्था के द्वारा गारंटीड रहती है। जब इसमें डिफॉल्ट होता है या लोग नहीं चुका पाते हैं, उसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं कि ये अकाउंट NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया
0: जी,
1: तो वैसे केस में बैंक को कुछ पैसा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पैसा उस गारंटी फी के बदले में, वो जो कंपनी जो CGTMSE जो गारंटी प्रदान कर रही है
0: जी,
1: उससे कुछ पैसा बैंकों को मिल जाता
0: है। लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।
2: बिल्कुल, ऐड करना चाहूंगा कि बैंक का लोन खराब होगा, लेकिन सबसे बड़ी जागरूकता की बात है, इस आकाशवाणी के माध्यम से सारे श्रोताओं को बताऊंगा कि किसी भी लोन में भी, हम स्वर्णनिधि में भी उस तरह से, कि आपका जो CIC है उसमें डिफॉल्ट अगर आता है तो भविष्य में आपको कोई भी ऋण लेने से आपको शायद बाधा पहुंचे
0: जी।
2: तो इसलिए है कि जागरूकता की 10,000 नहीं, 15,000, 25,000, 50,000 नहीं, उसके आगे भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध है
0: जी।
2: तो जो लोग सफलतापूर्वक इसको पुनर्भुगतान करते हैं उनका एक क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होता है जिससे उनको आगे लोन लेने में सहायता मिलती है। अगर उन्होंने पहला लोन खराब कर लिया या इसमें किसी भी स्तर पे खराब किया तो उनका जो सिविल स्कोर या CIC बोलते हैं
0: जी,
2: जो हिस्ट्री है क्रेडिट की, उसमें डिफॉल्ट दिखेगा तो आगे लोन लेने में उनको असुविधा होगी।
0: यानी अगर नियमों का पालन करते हुए सही समय पर लोन चुकाते हैं तो आगे एक बहुत बड़ी राशि भी मिल सकती है और वो बड़ा काम कर सकते हैं। और अगर परिस्थिति वश कभी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं चुका पाए तो उसका आगे भी नुकसान हो सकता है। जी
1: नीलम जी, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो सरकार के द्वारा इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना है जो 7% है
0: जी,
1: वो सब्सिडी का फायदा भी तभी मिलेगा जब आप समय से ऋण को चुकाते हैं। और इसमें जो CIC में जो उनका डिफॉल्ट नजर आता है उसको कह सकते हैं कि मार्केट में आपकी साख चली गई।
0: जी बिल्कुल,
1: तो आप विश्वास खो जाते हैं मार्केट का। और ये सब डेटा जो है डिजिटली अवेलेबल होगा, सो जितने भी फॉर्मल सेक्टर के लेंडर हैं वो हमेशा कोई भी आवेदन अगर आपके पास आता है ऋण का तो उसको स्वीकृति करने के पहले उस डेटाबेस को देखते हैं
0: जी।
1: तो वहां पे अड़चन आएगी, वहां पे बाधा आएगी कि उनका रिकॉर्ड में नजर आएगा कि ये इस लोन में इन्होंने डिफॉल्ट किया था, तो यहाँ पे साख जो है आपकी गिर जाएगी
0: जी। यानी बहुत सरल तो इस विधि को रखा गया है लेकिन इसमें विश्वसनीयता बनी रहे इसका भी ध्यान रखा गया है। और यदि अपने काम को लेकर कोई गंभीर हो, सच में उसे जरूरत है, तभी वो लोन के लिए अप्लाई करे। यहाँ मैं शैलेश जी आपसे आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी। हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं?
1: लाल पत्थर फिल्म का है, गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं, ये जी विनोद मेहरा पे फिल्म आया गया।
0: जी वो पियानो बजा रहे हैं इस गाने में। ठीक है, तो हम यही गाना सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आपने बताया कि QR कोड आप देते हैं जो भी वेंडर्स हैं उनको, ऐसे में ये बताएं कि बैंक में आवेदन प्राप्त होने के बाद लोन स्वीकृति जो होती है और जो वितरण होता है उसमें लगभग कितना समय लगता है, और कई बार हमारे जो वेंडर्स होते हैं वो ऐसी स्थिति में भी होते हैं कि बहुत ज्यादा लिखना पढ़ना वो नहीं जानते हैं, तो क्या बैंक की ओर से उन्हें कोई इस तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है कि उनकी ओर से ये काम बैंक स्वयं कर दे?
1: जहां तक बात है कि लोन का डिजिटल होने में, अगर जिस बैंक ने स्वनिधि योजना जो है उसको अगर डिजिटल में कर लिया
0: जी,
1: जो तीनों चरण हैं इसके, प्रथम द्वितीय और जिसमें अलग अलग राशि का लोन दिया जाता है, तो इसमें 1 से 2 दिन लगता है
0: जी।
1: और अगर उससे हटकर ऑफलाइन मोड में, जैसे अर्बन लोकल बडी के पोर्टल पे एप्लीकेशन आया, बैंक के पास गया, तो इसमें 3 से 5 दिन में सैंक्शन हो जाता है
0: जी।
1: और इसके लिए मुख्यतः उनको जागरूकता या उनको इसकी समझदारी बढ़ाने के लिए कि वो किस प्रकार से डिजिटल में या पोर्टल में, उसके लिए हम लोग अपने बैंक कर्मियों, जैसे बैंक में जो स्टाफ है, ऑफिसर है और या BC कॉरेस्पोंडेंट है
0: जी,
1: उन सब की सहायता लेकर के और हैंड होल्डिंग करके अर्बन लोकल बॉडी के साथ मिलकर आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, कैंप्स करते हैं, और वहाँ जो लाभार्थी हैं उनको बुला करके 1 by 1 पोर्टल से अवगत कराया जाता है। डिजिटल लेंडिंग अगर उपलब्ध है उस बैंक में तो उसको डिजिटली कैसे करना है, क्योंकि शैलेश सर ने बताया कि OTP आती है और आने के बाद वेरीफाई होता है और लोन सैंक्शन और डिसबर्स हो जाता है अकाउंट में। चूंकि इसकी राशि बहुत बड़ी नहीं है और चूंकि इसमें CGTMSE की गारंटी उपलब्ध है, तो मैं निर्भीक होकर जो अपना काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बैंक भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। और हैंड होल्डिंग, BC कॉरेस्पोंडेंट, बैंक कर्मी और ULB के लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तभी ये इस मुकाम पे पहुंचा है ये
0: जी। राजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमने ये तो बात की कि अगर लोन समय से चुकता नहीं हो पाता तो बाजार में साख जो है वो खराब होती है, लेकिन अगर समय से लोन जो है वो चुकाया जा रहा है और अच्छा हमेशा व्यवहार रहा है, तो क्या इसका लाभ मिलता है और किस बड़ी राशि की हम अभी बात कर रहे थे?
1: निश्चित रूप से PM स्वनिधि एक, मैं कहूंगा कि प्रथम चरण है
0: जी,
1: जिसमें हमने और भारत सरकार ने, बैंकों ने, अर्बन लोकल बडी ने मिल करके जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जोड़ा है, उनका फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन क्रेडिट लिंकेज करके किया, ये शुरुआत हुई और इसको जिन लोगों ने सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया वो हमारा, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
0: जी,
1: जिसमें कि 20 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है और शुरुआत में ये 50,000, 5 लाख और 10 लाख, और 10 लाख का सफल होने पे वो फिर 20 लाख का लोन भी ले सकते हैं। और उसके लिए भी इतनी ही सरलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन है, आधार कार्ड हो गया, और जैसे अगर बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी हैंड होल्डिंग बैंक की चाहिए होती है उसमें, कि उनका जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रारूप लेकर के और उसको पोर्टल पर ही, उसके लिए भी पोर्टल बना हुआ है, वहां से करके सैंक्शन हो जाता है और वो 50,000 का सैंक्शन सफलता करते हैं। नेक्स्ट में वो जैसे शिशु, किशोर एंड तरुण
0: जी,
1: 3 चरण है जिसमें 50,000 और 5 लाख और 10 लाख। तरुण यदि आपने सफलतापूर्वक कर लिया भुगतान तो तरुण प्लस जो कि 20 लाख का लोन होता है मुद्रा योजना के अंतर्गत भी, इसमें भी कोई गारंटी नहीं, कोई बंधक नहीं, और आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो आप उसके लाभान्वित हो सकते हैं
0: जी।
1: ये है और उसके आगे तो अंत नहीं है।

0: अर्बन और रूरल दोनों जगह में लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है भारत में, और इसमें मुख्यतः भारत की नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी, राजस्थान और अपना जो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके जो लोग समूह बना करके लोन ले सकते हैं, और ये शुरुआत में 6 महीने की डेवलपमेंट उनकी ग्रूमिंग होती है कि उनको बैंकिंग प्रणाली की और बैंकिंग लेन देन की समझदारी दी जाती है उनको। उसके लिए लाइवलीहुड मिशन है जो काम करता है बैंकों के हेल्प से, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा समूह उभर के आ चुका है ऊपर, जो लगभग करोड़ करोड़ के लोन उन लोग को मिल रहा है जब वो लेवल वाइज उठते जाते हैं उससे। तो निश्चित रूप से SHG ग्रुप है और JLG भी है, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, जिसमें नाबार्ड के हेल्प से हम लोग काम करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जब समूह बनाएंगे तो बैंक में और सरकार ने योजना दी हुई है जिनकी मदद से वो एंटरप्रेन्योरशिप को और ऊपर ले जा सकते हैं, अपना व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं।
1: जी, व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और उसके लिए सुविधाएं हैं। जी, ये बताएं कि आप कौन सा गाना सुनवाना चाह रहे हैं हमारे श्रोताओं को?
0: मैं चूंकि PM स्वनिधि के कार्यक्रम में आया हूँ
1: जी,
0: और तो मैं चाहूंगा कि न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो।
1: वाह, बहुत अच्छा गाना आपने ये चुना है सुनील दत्त साहब का, आपकी पसंद का यही गाना हम सुनवा रहे हैं।

0: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। योजना की लाभार्थी हमारे साथ हैं बबीता शर्मा जी, और साथ ही हमारे विशेषज्ञ हैं बैंकिंग सेक्टर से, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार की योजनाएं और सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं, और छोटी छोटी सी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हुए, कुछ नियमों का पालन करते हुए लोग अपना काम करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन जिस पैसे से पैसा कमाया जाता है वो शुरुआती धनराशि जो है वो जुटाना बहुत मुश्किल होता है, और कभी बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी, किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था, और कभी अपनी कोई पसंदीदा चीज छोड़नी पड़ती थी, गिरवी रखनी पड़ती थी, तब धनराशि मिलती थी, तब जाकर लोग अपना काम शुरू करते थे। लेकिन ये सारी जो दुविधाएं हैं इन्हें दूर कर चुकी है पीएम स्वनिधि योजना, क्योंकि अब शुरुआती धनराशि जो है भले ही वो थोड़ी छोटी है, लेकिन अपने काम की शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी धनराशि बैंक से मिल जाती है, और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते हुए अपनी मेहनत के बल पर बैंकों से और धनराशि प्राप्त की जा सकती है, अपने समूह को बड़ा किया जा सकता है, और इस तरह से अपने सपने को भी छोटे से बड़ा किया जा सकता है, और फिर उसी सपने से जुड़ता है पूरा परिवार, जैसे बबीता जी का परिवार जुड़ा हुआ है। बबीता जी, ये बताएं कि अभी परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और आपके काम से सीधे कौन जुड़े हैं?
1: मैं सबसे अपने स्वेता से हाथ जोड़कर सबसे कहना चाहती हूँ, मेरे परिवार में 3 बेटे हैं मेरे जी। और एक मैं, 4 हम प्राणी हैं
0: जी।
1: मेरा परिवार जिस तरीके से चलता है शायद मैंने कभी उम्मीद नहीं की होगी, ये पीएम सुनिधि योजना से जुड़कर पीएम माने साथ पीएम जी मेरे साथ चलते हैं। उस सुनिधि का मतलब है होगा मेरा सुनहरा पल
0: जी,
1: सुनहरा सफर मेरा चालू हुआ जब मुझे इस योजना से जुड़ने का अवसर मिला। तो आज मैं इस मकाम पर हूँ कि इस अपने बच्चों की फीस भी भर पाई हूँ, और अच्छे कुछ लोग हैं जो मैं गरीब बेटियों की शादी में भी कन्यादान मुक्त दे देती हूँ, और एक एनजीओ है मेरी, ये बात सुनो, तो उसमें कभी कभी 31 बेटियों की शादी भी होती है, तो उसमें मैं अपने पूजा का सामान सारा ऐसी भेजती हूँ उनके कन्यादान के लिए
0: जी।
1: मुझे इतनी खुशी है आज शायद उसका फल मुझे आज मिला जब मैं यहाँ इस मकाम पर पहुंची, यार मोदी जी का मुझे थोड़ा उन्होंने मेरा जिक्र जैसे किया है, तो मैं चाहती हूँ जैसे आज मेरा जिक्र किया सभी महिला है या पुरुष है इसी योजना का लाभ उठाकर वो भी बन सकते हैं आज
0: जी।
1: मोदी जी के जिगर के करीब आज मैं इतनी खुश हूँ कि नहीं बता सकती हूँ कि मैं आज कितनी मुझे खुशी हो रही है सब लोगों से मिलकर कि इस मंच पर मैं आज पहुंची, तो कहीं ना कहीं पीएम जी की शुभकामनाएं मेरे साथ या उनका साथ मेरे लिए बना रहा। लाभ भारती का मतलब होता है कि लाभ, किस तरह का लाभ, एक मैं लाभ भारती किस लिए दी क्योंकि इस योजना का लाभ मुझे मिला, तो आज मैं लाभ भारती का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मैं आज अपने परिवार को अच्छे से पाल पाई और उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पाई और अपनी इज्जत से मान सम्मान अपने माँ बापों का नाम रोशन कर पाई, तो इसलिए सब लोगों का आभार प्रकट करती हूँ
0: जी। तो आपके बेटे जो हैं वो आपके काम में हाथ बटाते हैं
1: जी? मेरे जब ये कोरोना काल था तो हम तीनों माँ बेटा बड़े दुबक दुबक कर पर्ची लेकर अंदर से सामान दिया करते थे। बेटे मेरे सुबह स्कूल जब जाते थे तो दुकान खोल करके जाते थे, तो मैं इतना उनका लंच बना देती थी, तो जब वो स्कूल जाते थे तो मैं दुकान पर बैठ जाती थी, तो जब वो दोपहर को आना 1 घंटे बाद उनको आराम करके, तो शाम के टाइम उनको बैठा कर फिर खाना बनाने जाती थी, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चली। और मेरे
0: और
1: बच्चों
0: अभी
1: ने मुझे
0: बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं
1: जी, मुझे मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया
0: जी।
1: हर बच्चे ऐसे हों जो एक माँ को सपोर्ट करें एक हस्बैंड के जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं मैं सभी बच्चों को ऐसी एक वो देती हूँ, मेरे बच्चों में आज किसी चीज का ऐब या कोई ये नहीं है कि बहुत से बच्चों को देखती हूँ मैं कि माँ जॉब करने जाती है, तो मैंने इस तरीके को रख के देखा कि अगर आज मैं जॉब करने जाऊंगी तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, तो मैंने ये कार्य अपनाया, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे तो उनको बड़ा शौक था, तो 2-2 रुपए की कभी टोपी लेकर आते थे तो दरवाजे पर रखकर एक स्टूल बैठ जाते थे, तो जैसे हमारी गली है तो उसी में ही सब बच्चों को बुलाकर इतने में उस चीज को बेच देते थे
0: जी। तो मुझे छोटी उम्र से ही आपने स्वावलंबन सिखाया उन्हें?
1: मुझे ये कहीं ना कहीं लगा कि स्वाभिमानी से भी जीना है और मेरे बच्चे साथ मेरे रहेंगे तो मैं उनको पाल भी पाऊंगी और उनको अच्छे से परवरिश भी दे पाऊंगी, तो इसलिए मैंने जॉब को ना कर कर ये
0: अपना काम अपनाया
1: जी। तो इसमें मुझे अच्छा एक रिस्पांस मिला अपने बच्चों से भी, तो सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आज मेरे बच्चे आज मेरे साथ में सपोर्ट कर बन के खड़े हैं और आज मैं यहाँ हूँ, कुछ ना कुछ उसमें आज मेरे बच्चों का भी सपोर्ट है, तो सबके बच्चे ऐसी बने और अपनी माँ का नाम रोशन करें और मेरी तरह एक महिला बनके अपने आप में सम्मान को बचा सकती है और पैरों पे खड़ा हो सकती है।
0: जी बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से बबीता जी मैं आपको देती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये सुनना, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि महिला अपने स्वाभिमान के साथ ये काम कर सकती है, और दूसरा आपने अपनी जो कहानी हमें बताई है उससे हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता प्रेरित जरूर हुए होंगे जो जीवन में इस समय कहीं किसी कठिन दौर का सामना कर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो अपने आसपास के लोगों से मदद मांगिए, उनसे जिक्र कीजिए, क्योंकि हमारे लिए ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं सरकार की ओर से दी गई होती है जिनकी कई बार हमें जानकारी नहीं होती, और जानकारी के अभाव में जो हमारा संघर्ष का समय है वो थोड़ा सा और जटिल लगने लगता है। लेकिन जब मदद का हाथ मिलता है तब हमारी परेशानियां दूर होने लगती हैं, और बबीता जी इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने इस समय हमारे स्टूडियो में बैठी हैं। बबीता जी आपसे मैं और बातें करूंगी और आपसे बहुत कुछ जानना है। शैलेश जी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है इसने जो अनौपचारिक क्षेत्र है हमारा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जैसे रेडी पटरी वाले और अन्य खोमचे वाले हैं, खोखे वाले हैं, इनको मुख्य धारा की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का किस तरह का स्वाभिमान दिया है, किस तरह का आत्मविश्वास इस योजना ने दिया है?
2: यह योजना एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है
0: जी,
2: क्योंकि ऐसे जो वो मनी लेंडर या जो बाजार में जो लोग उधार देते हैं और वह काफी महंगा होता है और उनके वसूली की प्रक्रिया भी काफी कठिन होती है
0: जी,
2: और ऐसे में ये बिल्कुल ही सरल है, और इससे ना ही उसमें उनमें केवल आत्मनिर्भरता आई है, स्वावलंबन आया है, इसको हम लोग स्वनिधि से समृद्धि की ओर का भी एक हम लोग देख सकते हैं कि रास्ता तैयार हो रहा है। और जैसा कि राजेश जी ने कहा कि आगे अगर वो मुद्रा योजना का भी लाभ लेते हैं
0: जी,
2: तो हम केवल यहाँ पे स्वरोजगार की बात नहीं है, यहाँ पे आप रोजगार का सृजन भी करते हैं और समाज के दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं
0: जी।
2: तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि इस छोटे से स्वनिधि से आप प्राप्त कर सकते हैं, और यह बैंकरों को भी काफी संतोष और खुशी प्रदान करता है कि मात्र 15,000 रुपये के ऋण से शुरुआत करके वो हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह सबके लिए, जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, ये सभी के लिए काफी अच्छा है, देश के लिए, समाज के लिए, बैंक्स के लिए, सबके लिए अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्य धारा में जुड़ें और देश की आर्थिक विकास में सहयोग करें
0: जी। राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है कि कई बार जो आर्थिक परेशानियां होती हैं वो व्यक्ति को किसी ना किसी अपराध की तरफ भी धकेल देती हैं, तो आपका क्या विचार है इस बारे में कि जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ते हैं, एक डेटा तैयार होता है, तो क्या इससे अपराधों में भी कमी आई है?
3: निश्चित रूप से जब रोजगार के अवसर नहीं होते हैं तो भटकाव एक बहुत सारे ऐसे तत्व हैं हमारे समाज में जहां पर कि लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं और कुछ बह जाते हैं उसमें। निश्चित रूप से पीएम स्वनिधि योजना इसमें 18 वर्ष से ऊपर जो ऋण के लिए पात्रता होती है उन सबको एक अवसर दे रही है कि वो किस तरह से अपना रोजगार स्वरोजगार आरंभ कर सकते हैं और उसके लिए कि स्वनिधि से समृद्धि की तरफ, तो बहुत ही अच्छा एक अवसर है कि वो सारे युवा, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, या जो भी इसमें योग्यता पात्रता के हिसाब से हैं, इसका लाभ उठा करके निश्चित रूप से इस अपराध के जो अवसर थे उसमें कमी आई है और लोग रोजगार की तरफ बढ़े हैं, अपने जीवन के स्वावलंबन की तरफ बढ़े हैं
0: जी। बबीता जी आपसे जानना चाहूंगी, जब सबसे पहले आपको लोन की पहली किस्त मिली तो क्या बदलाव आया, उसका आपने क्या किया?
1: मैंने उसका, उस टाइम पे मेरा काम बंद था तो उसमें अपना सामान उठाकर अपनी दुकान में लगाया और व्यापार मैंने अपना चालू किया
0: जी।
1: तो ये अभी सर ने बोला कि 15,000 का मतलब नहीं है, अगर मुझे लगन और मेहनत, एक मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मेहनत करना मेरे पापा ने सिखाया और हिम्मत और साथ मेरे पीएम जी ने मुझे दिया, तो मुझे दोनों को मिलकर मेरी हिम्मत बनी। तो मतलब 5,000 से नहीं होता, मतलब होता कोशिश करने से. 10,000 से मैंने कोशिश की तो मैं यहाँ तक पहुंची
0: जी.
1: तो 10,000 का अगर किसी इंसान को अगर लगन हिम्मत होगी तो 10,000 रुपए से अपना व्यापार चला सकता है. ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें लाख दो लाख रुपए चाहिए. 5,000 से भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, लेकिन एक जुनून होना चाहिए
0: जी. और आपको जो ऋण आपने चुकाया बैंक को वापस दिए पैसे, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई?
1: नहीं, मेरा पेटीएम से लेन देन होता है तो जब मेरा कारोबार बढ़ा तो उसमें किस्त अपने आप ही उससे कट जाती है
0: जी. और अब आप क्या सोच रही हैं आगे?
1: अगर पीएम सुनिधि जी का मुझे साथ मिला और ऐसे सर मेरे सामने बैठे, इनका हाथ जोड़कर वो करती हूँ धन्यवाद, जो ऐसे लोग हम लोगों के लिए सेवा में लगे हैं
0: जी.
1: मौका मिला तो कुछ अच्छा कर पाऊँ और आप लोगों के बीच दोबारा आ पाऊँ, यही निवेदन करती हूँ.
0: तो बबीता जी, आपका ये हौसला बना रहे हम यही चाहेंगे. ये बताइए कि आप अपनी पसंद का एक और गाना हमारे श्रोताओं को कौन सा सुनवाना चाहेंगी?
1: जिंदगी प्यार का गीत है
0: जी,
1: इसको सुनना पसंद करूंगी
0: जी. बिल्कुल, यही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सौतन फिल्म से.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स ही विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जूनियर महिला हॉकी टीम को एशिया कप का टाइटल बचाने के लिए बधाई दी है। उन्होंने जूनियर पुरुष हॉकी टीम को भी फाइनल में 4-1 से शानदार जीत के साथ एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये शानदार जीत युवा खिलाड़ियों के असाधारण टैलेंट, अनुशासन और पक्के इरादे को दिखाती है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करें, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे.
2: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with the heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remain firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that lab-grown diamond market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea yesterday. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far, as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman. In a statement, the Indian Embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. The leaders of Northern Ireland, Scotland and Wales will meet in Cardiff today to discuss the future of the United Kingdom. Scotland's First Minister John Swinney, Wales' First Minister Rhian ap Iorwerth and Northern Ireland's leadership are expected to sign a joint declaration affirming their right to self-determination, including the right to pursue independence through democratic means. They are also expected to discuss closer cooperation on the economy, energy, Europe and international affairs. In women's cricket, India defeated Sri Lanka by 72 runs in the final of the Women's T20 Asia Cup in Dubai tonight. Batting first, India scored 183 for 5 in 20 overs, while Sri Lanka managed 111 for 7 in their 20 overs. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the first T20 international of the three-match series in Delhi tonight, chasing a target of 100.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू. वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड. गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ.

लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म पतंग से। संगीत था चित्रगुप्त का और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। ये फिल्म आई थी 1960 में।

और इस फिल्म का निर्देशन किया था हरगोबिंद दुग्गल और सूरज प्रकाश ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, उल्हास, अचला सचदेव, रणधीर, राज मेहरा और मनोरमा ने। इस फिल्म की कहानी राजन यानी राजेंद्र कुमार की कहानी है, जो शांति नाम की एक ऐसी लड़की की मदद करने की कोशिश करता है जो आंखों से देख नहीं सकती, और उस प्रेम को बहुत ही सुंदर तरीके से इस फिल्म में दर्शाया गया है। और अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

फिल्म का नाम बहू बेगम और आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। ये फिल्म आई थी 1967 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था एम सादिक ने। फिल्म में अभिनय किया था प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार ने और फिल्म को संगीत से सजाया था रोशन साहब ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है फिर से रफी साहब की आवाज़ में।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 1:33 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत रफी साहब की आवाज़ में।

फिल्म का नाम दिल एक मंदिर और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। ये फिल्म आई थी 1963 में और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था सी वी श्रीधर ने और इस फिल्म की पटकथा लिखी थी राज बलदेव राज ने और इस फिल्म में अभिनय किया था राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, राजकुमार और महमूद ने। संगीत शंकर जयकिशन का था और इस फिल्म के सभी गीत हिट हुए थे और सभी को पसंद भी आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और पांचवें स्थान पर रही थी। अगला गीत लता मंगेशकर और रवि साहब की आवाज़ में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। और ये फिल्म आई थी 1961 में और इस फिल्म को लिखा, निर्मित और निर्देशित किया था नासिर हुसैन ने। ये नासिर साहब की पहली फिल्म थी जिसका उन्होंने निर्माण किया था। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और आशा पारेख ने। प्राण ने खलनायक की भूमिका निभाई थी, राजेंद्र नाथ सहायक भूमिका निभाई थी। और इस फिल्म का संगीत काफ़ी सराहा गया था दर्शकों के द्वारा। और अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

वक्त हुआ है 1:51 और 10 सेकेंड और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ. मैं हूं आपके साथ मंजू और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति

0: शक्ति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए दिशा स्पष्ट करेगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने कल मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जूनियर महिला हॉकी टीम को एशिया कप का टाइटल बचाने के लिए बधाई दी है। उन्होंने जूनियर पुरुष हॉकी टीम को भी फाइनल में 4-1 से शानदार जीत के साथ एशिया कप जीतने के लिए बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीत सिंह। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे
2: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. The External Affairs Ministry said the BRICS summit in New Delhi produced a number of concrete and development-oriented outcomes. Briefing the media in New Delhi, Secretary Economic Relations in the Ministry, Sudhakar Dalela said, more than 50 concrete outcomes had been achieved across various thematic tracks, describing this as a significant achievement of India's BRICS chairship.
3: India's chairship has focused on deliverables. The summit has endorsed a substantial package of outcomes across our four priority pillars. There are concrete over 50 outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India's chairship this year.
2: Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah will address the inaugural session of Hindi Divas 2026 and the 6th All India Official Language Conference in Mumbai today. The two-day conference, organized by the Department of Official Language under the Ministry of Home Affairs, will bring together scholars, literatures, educationists and senior government officials to discuss the promotion of Hindi and its coordination with other Indian languages. India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaya off the coast of Oman. In a statement, the Indian Embassy in Oman said, 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. Diplomatic efforts are gaining renewed focus as the ongoing US-Iran conflict continues to affect the Gulf region. Iran and Gulf countries are expected to meet in Oman today to discuss the Strait of Hormuz and broader regional security. Iran has said it has reached an understanding with Oman on a possible entry and exit route through the strait. However, an immediate reopening of the strait appears unlikely as Iran has linked it to the US agreeing to its conditions. In women's cricket, India defeated Sri Lanka by 72 runs in the final of the Women's T20 Asia Cup in Dubai tonight. Batting first, India scored 183 for 5 in 20 overs, while Sri Lanka managed 111 for 7 in their 20 overs. And with that, we end this news bulletin.

रात के 2 बज रहे हों और मैं किसी के दिमाग में चल रही हूँ, रात के 2 बज रहे हों और मैं किसी के दिमाग में चल रही हूँ, एक बहुत सुंदर याद की तरह भी, तब भी मैं कहूँगी ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इतनी ज़रूरी मैं कभी ना बनूँ कि किसी की नींद की जगह ले लूँ। साजिश प्लो 1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 7 सेकंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई जहां हम अपने दिल के एहसास को, जज्बात को गीतों से, बातों से समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गज़ल के साथ। आवाज़ है जगजीत सिंह की।

अगर मेरे आने से आपके चेहरे पर स्माइल आई है तो फिर इस स्माइल का साइज थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको तो मालूम ही है जब आप मुस्कुराते हैं तो मेरे साथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। और आज मैं आपके लिए सदाबहार गानों के साथ साथ प्यार भरी बातें लेकर आई हूँ। तो अगला गीत आप ही के लिए, रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फूल तो मैं आप तक नहीं भेज सकती, लेकिन हाँ प्यारी प्यारी बातें आप तक जरूर पहुंचेंगी, ऐसा वादा जरूर रहा। और वैसे भी फूलों का साथ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता, और मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि खुशबू से पीछा छुड़ाना आसान होता है, बस वो आवाज़ें हैं जो पीछा करती हैं। अगला गीत आप ही के लिए।

तुम्हारे बाद तुम नहीं आते, तुम्हारे बाद तुम नहीं आते, दुख आता है और खटखटाता है मेरे मन की झांकल, मन के खुलते ही भर भराते हुए गिर पड़ती हैं यादें, मुदी आंखों में कलपता है कोई दिन कोई साल कोई शहर रह रहकर। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:35 और 20 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

0: चाय तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

गानों में कहना कितना आसान हो जाता है ना कि दो लफ्जों की कहानी है इश्क और कुछ नहीं है, जबकि कई बार पूरी जिंदगी हमारी ख़त्म हो जाती है और हम सामने वाले को या सामने वाला हमें समझा नहीं पाता है ना। कई बार क्या होता है कि हम वक्त रहते हम सामने वाले को समझा नहीं पाते, और जब समझाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला समझना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि हम अपना खालीपन, जो इंसान जा चुका है, हम अपना खालीपन उसके पास बार बार लेके जाते हैं, लेकिन उस इंसान ने उस खालीपन को भरा है या नहीं भरा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए अब कोई जगह उसके पास है ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसे लोग समझते ही नहीं है। कोशिश पे कोशिश करते हैं, जो एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक बौद्धिक विकार है, एक बौद्धिक असंतुलन है। इसलिए इश्क को समझने के लिए पूरी जिंदगी नहीं, समय रहते समझना चाहिए। अगला गीत आप ही के लिए।

नीली नीली अंबर में चांद के साथ साथ हम भी आपसे मुखातिब हैं और बातें हो रही हैं इश्क की, मोहब्बत की और दिल की। और जब बात दिल की हो और इश्क कबूल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगला गीत आप ही के लिए।

रात सिरमई में आज के लिए बस इतना ही. अब से थोड़ी देर में यानी कि 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार. 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी माधुरी. मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर वैश्विक नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। भारत इस महीने की 15 से 18 तारीख तक गुजरात के गांधीनगर में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 की मेजबानी करेगा। ये फोरम सर्कुलर इकोनॉमी, लोगों और समृद्धि के लिए बदलाव थीम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर मंगलवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें उद्योगपति, उद्यमी, नवोन्मेषक, शोधकर्ता, नीति निर्माता और शिक्षा भी शामिल हैं। ये फोरम ग्लोबल साउथ के साथ साथ सहयोग, निजी निवेश और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देगा। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और उसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले रिकर्व तीरंदाज धीरज बोम्मदेवरा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कल मेक्सिको के साल्टिला में रोमांचक शूट ऑफ में जापान के नाकानिशी जूनिया को हराकर तीरंदाजी के विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनने पर गौरव हासिल किया।
2: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें अडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा. हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा. हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे.
2: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS groupings as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah will address the inaugural session of Hindi Divas 2026 and the 6th All India Official Language Conference in Mumbai today. The two-day conference organized by the Department of Official Language under the Ministry of Home Affairs will bring together scholars, literators, educationists and senior government officials to discuss the promotion of Hindi and its coordination with other Indian languages. President Draupadi Murmu has extended greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. In her message, she said Lord Ganesha symbolizes wisdom, prosperity and auspicious beginnings. The president prayed that Lord Ganesha brings happiness, peace, good health and prosperity to everyone. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea yesterday. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. Leaders of Northern Ireland, Scotland and Wales will meet in Cardiff today to discuss the future of the United Kingdom. Scotland's First Minister John Swinney, Wales First Minister Rhian ap Iorwerth and Northern Ireland's leadership are expected to sign a joint declaration affirming their right to self-determination, including the right to pursue independence through democratic means. They are also expected to discuss closer cooperation on the economy, energy, Europe and international affairs. In women's cricket, India defeated Sri Lanka by 72 runs in the final of the Women's T20 Asia Cup in Dubai last night. Batting first, India scored 183 for 5 in 20 overs, while Sri Lanka managed 111 for 7 in their 20 overs. In the men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the first T20 international of the three-match series in Delhi last night. Chasing a target of 157 set by Afghanistan, India scored 157 for 3 in 13.4 overs. And with that, we end this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। और हमराही वो कार्यक्रम है जिसमें हम खास तौर पर लेकर आते हैं डुएट सॉन्ग। जी हाँ, युगल गीतों की खास पेशकश।

शतरंज फिल्म से ये गीत पहुंचा आप सभी तक मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ों में शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत तुम ठहरो और फिर किसी मंजिल की जल्दी न रहे तुम रुको और फिर किसी सफ़र की ख्वाहिश न रहे तुम बैठो जैसे सारी थकान को कंधा मिल गया हो तुम खो जाओ मगर दुनिया में नहीं मेरे होने में कितना खूबसूरत है ये लम्हा जिसमें ये सब कुछ कहा जा रहा है जिसमें तुम हो जिसमें मैं हूँ और जिसमें ख्वाहिशों का एक मेला है।

ये खूबसूरत सा गीत आप तक पहुंचा फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से, आशार मोहम्मद रफी की आवाजों में, ओपी नैयर के संगीत के साथ। कितना खूबसूरत होता है किसी का यूं ठहरना, बैठना, उलझना और उसमें फिर खो जाना, कुछ लम्हों के लिए ही नहीं, उम्र भर के लिए। बस एक दूसरे में ऐसे ठहर जाएं जैसे दुआ में सुकून ठहर जाए और सुकून में हर वो चीज मिल जाए जो बस ख्वाबों में सोची थी। और ऐसा ही साथ हमारा और आपका है कि लगता है कि ये जो दामन है ना, ये कभी नहीं छूटेगा।

हमारे ख्वाब तुम्हारे फिल्म से ये गीत सुना आप सभी ने मदन मोहन का संगीत आशार मोहम्मद रफी की आवाजों में सब कहते थे संभल जाएगा ये दिल एक दिन फिर वो दिन भी आया और रात ढल गई लोग बदल गए उनकी बातें बदल गईं पर मेरी यादें वहीं की वहीं ठहर गईं

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. ये सफर है हमराही का जिसमें आपको हम सुनवाते हैं खास युगल गीत. और उम्मीद करती हूं कि ये जो गीत आप तक पहुंच रहे हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे. समय हो गया है सुबह के 3:29 और पूरे 30 मिनट हो चुके हैं अब. और अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म नीला आकाश से.

जी हाँ, फिल्म नीला आकाश से ये गीत आप तक पहुंचा मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ में मदन मोहन के संगीत के साथ। अगर बहुत दूर तक साथ चलना है तो याद रखना, हर मोड़ पर एक दूसरे को समझना होगा। कई बार अपने क्रोध को, अपने गुस्से को त्यागना होगा और बहुत बार एक दूसरे को माफ़ करना होगा। यही प्यार, सम्मान और एक दूसरे को समझना ही तो प्यार है।

ये गीत आप तक पहुंच रहा था फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से, लता और किशोर की आवाजों में, खयाम के संगीत के साथ और बोल लिखे गुलजार ने। तुम साथ हो तो ऐसा लगता है जैसे अधूरे ख्वाब जो हैं वो सब पूरे हो गए। मोहब्बत चेहरे से नहीं दिल से होती है, इसलिए सच्चा प्यार हमेशा हमेशा खूबसूरत होता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है हमराही का जिसमें मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ, और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म जाने अनजाने से।

सच में प्यार का तीर कब किसे घायल कर दे ये कहां पता चलता है और ये प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना फिल्म जाने अनजाने से मोहम्मद रफी और लता जी की आवाजों में शंकर जय किशन के संगीत से सजा था ये गीत प्रेम की सबसे खूबसूरत बात यही तो है कि इसे जानबूझ के शुरू नहीं किया जा सकता न जाने कहां दो अनजान दिल मिल जाएं और बात बन जाए न जाने कौन से किसी की बात आपको समझ आ जाए प्यारी लग जाए और फिर दिल उसी ओर बढ़ता चला जाए हो सकता है प्यार में देरी हो जाए हो सकता है आपको प्यार जल्दी मिल जाए लेकिन हाँ कभी कभी ये भी होता है कि इसके आस में उम्र भी गुजर जाती है लेकिन प्यार सिर्फ एक ही चीज़ से थोड़ी होता है बहुत सारी चीज़ों से होता है बस मन को कहीं लगा कर देखिए

भाई वादा तो हमने भी निभाया है, और ये जो गीत आपने सुना फिल्म जॉनी मेरा नाम से था, किशोर और आशा की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो वादा हमने यूं निभाया कि देखिए हमराही का ये पूरा कार्यक्रम युगल गीतों से सजा हुआ आप तक पहुंचाया, और ये आखिरी गीत भी आप तक पहुंच रहा है। इस गीत के बाद अगले कार्यक्रम में हमें मिलेंगे 4:10 पे, अरुणिमा लेकर आऊँगी मैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन में आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और उसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज से विकासशील देशों के लिए मानव अधिकारों पर 6 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम ITEC के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस सत्र में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्घाटन NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामाना सुब्रमण्यन करेंगे। आयोग के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के मानव अधिकार संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना और बेहतर तौर तरीकों के अनुभवों को साझा करना है। भारत कल से 18 तारीख तक गुजरात के गांधीनगर में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा। ये फोरम सर्कुलर इकोनॉमी, लोगो और समृद्धि के लिए बदलाव थीम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Navneet Singh. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said their discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे
2: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. The External Affairs Ministry said the BRICS summit in New Delhi produced a number of concrete and development-oriented outcomes. Briefing the media in New Delhi, Secretary Economic Relations in the Ministry, Sudhakar Dalela said more than 50 concrete outcomes had been achieved across various thematic tracks, describing this as a significant achievement of India's BRICS chairship.
3: India's chairship has focused on deliverables. The summit has endorsed a substantial package of outcomes across our four priority pillars. There are concrete over 50 outcomes across various thematic tracks, which is a significant achievement of India chairship this year.
2: Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah will address the inaugural session of Hindi Divas 2026 and the 6th All India Official Language Conference in Mumbai today. The two-day conference, organized by the Department of Official Language under the Ministry of Home Affairs, will bring together scholars, literators, educationists and senior government officials to discuss the promotion of Hindi and its coordination with other Indian languages. President Draupadi Murmu has extended greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. In her message, she said, Lord Ganesha symbolizes wisdom, prosperity and auspicious beginnings. The president prayed that Lord Ganesha brings happiness, peace, good health and prosperity to everyone. India has condemned the attack on the commercial vessel MT El Gaia off the coast of Oman. In a statement, the Indian Embassy in Oman said, 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. In women's cricket, India defeated Sri Lanka by 72 runs in the final of the Women's T20 Asia Cup in Dubai last night. Batting first, India scored 183 for 5 in 20 overs, while Sri Lanka managed 111 for 7 in their 20 overs. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the first T20 international of the three-match series in Delhi last night, chasing a target of 157 set by Afghanistan. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा के सफर में मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ। मुश्किलें तो हम सभी के जीवन में आती हैं, पर वो कमजोर पड़ जाती हैं जब आपको मजबूत पाती हैं।

जिंदगी बहुत ही प्यारी है बस ये यूं ही ख्यालों में खिलती रहे फूलों सी महकती रहे और ये महक हमारे साथ साथ चलती रहे ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म मशाल से किशोर कुमार की आवाज में

सागर तो खुद शक्ति का प्रतीक है और सागर के सामने जब खड़े होते हैं उसकी लहरें आती हैं जाती हैं छोटी बड़ी सब जिंदगी का राग सुनाती हैं। सागर फिल्म से ही ये गीत सुन रहे थे आप किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में आर डी बर्मन के संगीत के साथ।

याराना फिल्म से गीत सुन रहे थे आप किशोर कुमार की आवाज में। अगर नीयत अच्छी हो ना तो नसीब भी बुरा नहीं होता। जीवन में किसी को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्यार पाना सबसे बड़ा सम्मान।

अमर प्रेम फिल्म से ये गीत सुना आपने, किशोर कुमार की आवाज़ में, आर डी बर्मन का संगीत। कुछ तो लोग कहेंगे, बल्कि लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, और उस कहने पे शायद हमें गुस्सा भी आ जाए। हो सकता है हमें बुरा ना लगे, लेकिन जब बुरा लगे तो आपको जाहिर सी बात है सबको आता है, और बुरा लगना भी एकदम कायदे का अमल है। लेकिन ये जो गुस्सा और ये जो बुरा लगना है ना, ये हमारी अच्छाइयाँ ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला ही होता है, लेकिन हम में सारी अच्छाइयाँ भर देता है। यानी गुस्सा जहाँ हमारी अच्छाइयों को निकालता है, सब्र वो सब कुछ लौटा देता है। तो जब भी गुस्सा आए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, देखिएगा चीज़ें जो हैं वो पलट जाएंगी, आपके हक में हो जाएंगी।

जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है भोर अरुणिमा का और साथ में हूँ मैं माधुरी। समय हो गया है 4:41 और 32 सेकंड।

रात के इस पहर में अब क्या कहूँ कि हम मुसाफिर हैं एक कश्ती के, दोस्त बन जाएं तो बुरा क्या है, अभी सोचा है खुश रहें, देखे तकदीर में लिखा क्या है।

किस्मत फिल्म का ये गीत आपने सुना येसुदास की आवाज में। खिलते हुए फूल जितने सुंदर लगते हैं उसी तरह खूबसूरत दिखते हैं हंसते मुस्कुराते लोग। वैसे तो लोग खुशियों का राज ढूंढने में लगे रहते हैं पर खुशी का कोई राज नहीं होता, ये तो एक तरीका है जीने का।

और इसी के साथ अरुणिमा से वक्त इजाजत लेने का वक्त आ गया है. आप बने रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ. अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के दो दिवसीय सम्मेलन में हिंदी को बढ़ावा देने और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर चर्चा करने के लिए विद्वान, साहित्यकार, शिक्षाविद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी एकजुट होंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC आज से विकासशील देशों के लिए मानव अधिकारों पर 6 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम ITEC के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस सत्र में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इसका उद्घाटन NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन करेंगे। आयोग के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागी देशों के मानव अधिकार

कार संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करना और बेहतर तौर तरीकों के अनुभवों को साझा करना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए ईरान और खाड़ी देशों की आज ओमान में बैठक होगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में बहुत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत का आज पहला दिन है। इस दौरान लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार हमारे जीवन में ऊर्जा, ज्ञान और सकारात्मकता लाता है। उन्होंने कहा कि ये पवित्र पर्व सभी को जीवन में नए संकल्पों के साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की कि भगवान गणेश सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और शांति लाए। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर भोर सुहानी लेकर माधुरी है आज आप सभी के साथ। सुप्रभात।

बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे-छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ले आते हैं।

जिंदगी में आप कितनी ही बार हारें ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। बहुत सारी हार के बाद मिली हुई जीत भी सबसे अनमोल होती है।

अगर आप में हिम्मत का जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रास्तों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा।